ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM 101.8 MHz पर। आज शनिवार है, सत संवत 1948 के बैसाख माह की 19वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 9 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी आज की पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं आपके ही पसंद के गाने, आपकी फरमाइश पे सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुने थे नदीम सरवन की आवाज़ में गाया गीत। अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं मोकाती पाड़ा से रानू की पसंद का ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे हैं अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत। इसकी फरमाइश की है किले से सोनी जी ने।
1: जाने क्या हुआ है, जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार।

अगली फरमाइश की है, गोदानी पाड़ा से ब्रजरतन गोदानी जी ने, फिल्म का नाम है बॉम्बे का चोर।

मांगी थी हमने खुदाई कहाँ, ठोकर पे ठोकर मिली जो यहाँ। मांगी थी हमने खुदाई कहाँ, ठोकर पे ठोकर मिली जो यहाँ। क्या जाता अगर कोई दिल का नगर गुलजार करता, कोई प्यार करता। हसरत ही रही हमसे भी कभी, कोई प्यार करता, कोई प्यार करता, कोई दिल पे।

आप सुन रहे हैं फरमाइशें फिल्म संगीत। अगली फरमाइश की है प्रार्थना जी वाणी ने और वैष्णवी ने मदर्स डे के लिए एक स्पेशल सॉन्ग।

0: प्यार कर ले।
1: आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत। अगला गाना फरमाइश किया है मालीपाड़ा से गर्विका और परिधि ने मदर्स डे के लिए अपनी माँ के।

अभी आप सुन रहे थे अरमान मलिक की आवाज़ में गाए गीत। इसके साथ ही हमारा फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अब से थोड़ी देर में सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

0: चैनल से बोल रहे हैं। हमारे केंद्र से अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। इस समय दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर में आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्यमंत्री के साथ 5 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने सभी को शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। श्री चौहान का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। वर्तमान में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर प्रमुख परिचालन इकाइयों की कमान भी संभाल चुके हैं। राजधानी जयपुर में आज लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला हो रही है। इसमें नए आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम तथा दिव्यांग कानूनों पर मंथन किया जा रहा है। बिड़ला सभागार में हो रहे इस कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला में न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने तथा नए कानूनों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। अजमेर की ऐतिहासिक पहचान से जुड़े तारागढ़ किले और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र का कायाकल्प किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल इस बारे में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। गौरतलब है कि आजादी के बाद पहली बार इस किले और क्षेत्र के समग्र विकास तथा संरक्षण की व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। राज्य सरकार ने पिछले बजट में इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज 1 और कल 2 पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा जाँच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जाँच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 14 और 15 मई को चलाया जाएगा। 2 दिन के इस अभियान के तहत महिला सुरक्षा कानून और आत्मरक्षा के तरीकों के साथ महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फूलचंद

0: हिना ने बताया कि अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, पार्क और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं से अभद्रता करने वाले लोगों के खिलाफ मौके पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत कालिका टीम और निर्भया स्क्वाड को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टीमें सार्वजनिक स्थानों पर लगातार गश्त करेंगी। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अदम्य साहस और वीरता के पर्याय महाराणा प्रताप को नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन विदेशी दासता के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव का दौर बना हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी में कल तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने आज भी इन जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट बताया है। वहीं कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदला। नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी और सवाईमाधोपुर में दोपहर बाद धूल भरी आंधी चली और हल्की बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान में आज भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम पणिहारी।

0: रीता स्वीकार करी कोनी। और थाने एक बात ए भी बताऊं कि वो नी महाराणा प्रताप सु जीवन सपन एक ए भी सीख मिली कि अपन भले कीड़े विकट परिस्थितियों आ जावे, कीड़ी भी कठिनाई आ जावे, लेकिन आप रो जो स्वाभिमान है वो ना कदी कमजोर कोनी करनो, कदी कह रहे आगे झुकनो कोनी। और अपर वास्ते तो बड़े गर्व री बात है कि अपो ये वीरवारी भूमि में ना जन्म लियो हो। और जद अपो महाराणा प्रताप रे बारे में जद बात करो नी उमरी शौर्य गाथाओं रे बारे में ना, तो मन एड़ो हर्षित हो जावे कि बताओ आप।
1: सही बात है, तो बहुत ही बढ़िया जानकारी दी जा रही है। आज तुम्हारी आवाज सुन लग रही है तो मैं आज कुछ न कुछ विशेष योजना तो देखो रोज ही बोले
0: जी जी।
1: पर ए जो को आज रो दिन है ये दिन री तो अपरी खुदरी आवाज में भी पावर आ जाए के अपे हुए भूमि में बैठा हूं जे महाराणा प्रताप जो सूरवीर जन्म लियो और आप स्वाभिमान री जिंदगी जीवी और कोई तरीके री अधीनता जो को ग्रहण को नहीं करी और आप रे प्रजानो भी तो बढ़िया चलायो और आखिर दम तक लड़ता लड़ता वीरगति ना प्राप्त हो गया। तो अपनी जो राजस्थानी भूमि है हमें ए तो वो जन्म लियो अड़ा सपूत आज ए दिन आप हमारी बात करें आप हर्षित हुए आप गर्व महसूस करें, लेकिन जरूरत है कि आप नक्शे कदम मथे भी चलने की कोशिश करो। एड़ा बच्चा एड़ा संस्कार तैयार करो, एड़ा बच्चों ने जन्म दो, एड़ा बच्चों की परवरिश करो, एड़े बच्चों को माहौल बनाओ, एड़े बच्चों ने सीख दो, एड़े वीर पुरुष हो रो जो बातों हालांकि स्कूलों में और अपर जो पाठ्यक्रम है वो में भी महाराणा प्रताप रा पाठ भी आवे और सब हमारी स्टोरियाँ भी आवे वो तो बच्चों ने ध्यान है। फिर भी अगर घरे हमें जो दादी नानी कहानियाँ सुनावे वो कहानियों में अगर एड़ी एड़ी जी को महाराणा प्रताप रे अलावा भी कई सारा महापुरुष होया है, विद्वान होया है, वीर होया वो जी को कहानियों शोर गाताओं अगर बच्चों रे दिमाग में बचपन से बैठ जावे ना नीतू बहन तो पछे उमो ने कोई हटाई कर सके
0: जी। और जैसे था कहो कि शौर्य गाथाओं अगर आप महाराणा प्रताप के बारे में बताऊं या दूसरा वीर के बारे में बताऊं, एक बात बताऊं थो ना कि जब अकबर मेवाड़ में थे आक्रमण कियो नी तो महाराणा प्रताप मतलब आप जो को राजसी ठाट बाड़ था वो ना छोड़ के जंगलों में ना कितना वर्ष वहां बिताया। और सुनन में भी आवी कि वो यानी घास री रोटी बनाई के आप भी खाई और आप रे बच्चों ने
1: अच्छा वो अरे बिलाड़ी रोटी ले गई वो ही कहानी
0: जी जी बिल्कुल। तो जद जुको आदमी तो राजसी ठाट बार में ना जुको पल्लियो बढ़ियो वे जंगलों में ना कितनी दुर्जन परिस्थितियों में ना आप रो जीवन बितायो और कैसे कहने एकदम आदिवासी जुको समुदाय रा लोग था वो दाई आप रो जीवन व्यतीत कियो, लेकिन देखो अधीनता स्वीकार हुआ अंत तक को नहीं करी और नी अधीनता स्वीकार करी तो आज तक वो एक कैसे कहेंगे स्वतंत्र मेवाड़ का शासक के रूप में आज भी जानिया जावे।
1: और वो जो को घोड़ो तो चेतक
0: चेतक
1: तो मेरो भी नाम तो प्रसिद्ध हो
0: जी जी।
1: तो आ जाना चेतक नाम लो तो
0: महाराणा प्रताप रो घोड़ो हो
1: तो जो को देखो त्याग करे बलिदान करे और समाज रे बगा देश रे बगा आप रे शरीर नो दोरो करके कुछ काम कर जावे
0: जी
1: तो मोरा इतिहास तो देखो नीतू बहन बने
0: जी।
1: और एक हम ठीक है जन्म ले लियो रोटी खाई तो देखो रोटी तो हर इंसान छोटे मोटे बिल्ली कुत्ता को पेट
0: जी
1: भूखा उठे पेट भूखा सुवे कोई गुण इर वास्ते जिंदगी में ए जरूरी को नहीं कि सारा राजा ही बने ये सब तो राजा को नहीं बन सके, लेकिन ए एक मन में एक ओ होनो कि ना जिंदगी एड़ी जियो के कोई याद करे, कोई अपरो एहसान मने, कोई अपरी प्रशंसा करे, कोई भी काम एड़ो मत करो जिके सुखी कोई हे दृष्टि से अपन देखे
0: जी
1: ए मैं जाऊं एड़ा भी हुई तो बनती कोशिश ए राखनी हर एक मान है सोचनो चाहिए कि एड़ा महाराणा प्रताप आपरे घरोरे में इन्हों तैयार करे जिके सुखी आगे सु आगे अपने राजस्थान अपने समाज अपोरे देश अपोरे शहर री तो गौरव बढ़े ही बढ़े साथ ही साथ देश रो भी गौरव बढ़े और आगे आने वाले टाइम में माताओं ने भी संसार याद करे और जुको विभूतियां हुई उन्होंने तो देखो याद करी जे है। तो आज अपनी पणियारी में भी अपे ये वीर पुरुष महाराणा प्रताप न मन सु याद करें और श्रद्धांजलि भी दें और अपनी बहनों ने भी कहें कि अड़ा जो महापुरुष हुई अगर मोर ध्यान पर जाओ जो आज आप पणियारी रे मार्फत ध्यान पड़ गई
0: जी
1: कि आज महाराणा प्रताप की जयंती है। नहीं तो देखो ग्रस्त में बैठा हो कोई जरूरी को नहीं कि ठा पड़े नहीं भी पड़ जावे अड़ा दिन निकल भी जावे पर कदे जब कोई बात ठा पड़ जावे तो मेरी चर्चा
0: जरूर
1: करनी चाहिए। तो आप मन से श्रद्धांजलि दीजिए महाराणा प्रताप ना और हमें शुरुआत कर दीजिए अपनी पणियारी री तो आवन दो देखो एक फूट सो सी गीत
0: जी बिल्कुल।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: हाँ, फीस की टेंशन।
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर।
3: बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4,00,000 रुपए का, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ?
3: मिठाई।
0: आरबीआई कहता है
5: तरह से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: में आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: वाह साहब, नहीं तो मैंने तो फुट रो गीत सुनाए, जरूरी संदेश तो थे सुनाए बिना, रोज को थोड़ी आदत पड़ी हुई है। पर देखो के मन तो बैठे बैठे नहीं विचार आयो, आप यहाँ घना सारा ज्ञान सुनाए नहीं
3: जी,
2: भाई मोबाइल हो तो किन, भागवत हो तो किन, कथा हो तो किन, घर में माए तो भले आपे आड़ो पाड़ो में सुनो कि भाई हमें अपे आप ही पणियारी में ज्ञान झाड़ता रहो कि मानवता होनी चाहिए, एक बीजे तकलीफ देखनी चाहिए, एक बीजे ने कहना सहयोग की जरूरत है तो करना चाहिए। तो कहना नहीं तुम्हें ना ए सोचू कि ए जो लाए पड़े पड़े।

0: ये मैं भलो भलो मन खाना पे तो सूख जावे
1: जी
0: है। तो अपना जो एक पक्षी है बेचारा उड़े ही अबोला, उसको बोल भी कौन सके, और जब चींचाट करे तो अपन उठाई कौन पड़े। तो वह जो को पक्षी बेचारा उड़ रहा है ये गर्मी सू वो कुकर बचे।
1: ये तो बहुत पतेरी बात बताई हो।
0: हाँ, मेरे दिमाग में बात आई है कि देखो आगे तो किए पोखर भरोड़ा होता और सरोवर होता, मुंह में थोड़ा घना पानी होता तो पानी पी लेता, और घनी एड़ी भागा दौड़ को नहीं थी हणो री जो जिंदगी हुई है नी, जो तेज रफ्तार वाली जिंदगी
1: जी
0: वो आगे हती को नहीं। और एक और भी बात दिमाग में आई कि मोटा मोटा दरखत होता जो खिजड़ी है पीपल है के सरीस है, मोटा मोटा गौर मीना पर दरखत होता, और वो दरखत और बीच बीच में एक ये पक्षी जो कोई आपका घोंसला बनाता छोटा छोटा पखा ले जाके। अच्छा नहीं तो मैंने कलाकार इतनी सुंदर होती प्रकृति रो देखो थे फुटरा वो के घोंसलो भी एड़ो पक्को बनाता के आदमी जट देनो देखो तो उन्हें तोड़ कौन सकता। और एक मानवता थी एक भावना थी कि कोई भी पक्षी हो घोंसलो बनावड़ो तोड़ता कौन के पाप लाग से हती नहीं थोड़ी सुनोड़ी उसे बात
1: सुनोड़ी है।
0: और हमें वीर उल्टो थे देख लो के हरियाली तो लगाई है ये बात को नहीं, यहाँ पर सरकार प्रयास किया है और हाँ थे देखो हरे घर रहे आगे महिलाओं भी शौक चढ़े बागवानी लगावे छोटे छोटा पौधा लगावे और तो फल फूल बगा फूल और बगा लगावे, और रस्ते में आप जाऊं तो यहाँ सड़क रे किनारे भी छोटा छोटा पेड़ छोटे छोटा पौधा लागोड़ा हुई
1: जी
0: पर वो दरखत के जित पक्षी बैठे हमें चाहे वो आडो हो कबूतर हो कोयल हो चिड़िया हो जिको चिड़ियों री चाह चाहट सो जो आंख खुलती वो तो हमें बंद हो गई तो क्यों वो चिड़ियों गई के
1: मैं एक बात बताऊं, तो आज पक्षियों के बारे में बात करें तो थोड़ा आज एक बात याद आई मनो कि आज तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है और थो देखो मैंने मन री बात भी जान ली।
0: ये तो कोई भगवान की कुदरत है मनो तो पक्षी दिवस भी जाको नहीं था पर हूँ तो आज 68 में बोल रही हूँ कि पक्षी बेचारा केत गया।
1: तो देखो नी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस क्यों मनाया जावे, क्योंकि वहां जाना था कि चिड़ियों केत गए उमरी चहचहाट केत गई, तो ये वास्ते यह दिवस मनाया जावे कि यो पक्षियों रो अपो संरक्षण कर सको यो ना सुरक्षा दे सको यो ना जो को यो अस्तित्व अपो बनाए रख सको, क्योंकि हणो देखो इतने घने प्रजाति है जो को लुप्त प्राय हो रहे है उन्होंने रेड बुक री श्रेणी में रखे हणा पर एक देख लो अपर जो को राष्ट्रीय मतलब अपर राजस्थान रो पक्षी है गोडामण ओ हणो लुप्त प्राय हो तो है उए रो संरक्षण करियो उरे अंडो नो सहेज कर राख की हणो गुजरात में नो ले गया ओत हुए अंडे रो पूरी तरह से संरक्षण कियो और हणो वो मिनो चूजा निकलिया, तो ए एक तरीके से उरे संरक्षण वास्ते कियो जावी के एड़ा दिवस ये वास्ते मनाया जावी ताकि अपा उरी जो प्रजाति है उन लुप्त होण से बचा सके।
0: तो बहुत बढ़िया बात बताई नी तो बहन, मतलब एड़ा जो दिवस मनावे प्रवासी पक्षी दिवस जो बात बताई है ए मनो लगे जहां तक हो सके इंसान में जागृति लाउन पगा।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हणो जो को इंसान है नी वो सिर्फ आप स्वार्थी हो गयो है उरे मन में ना मानवता तो हमें दूर दूर तक मन तो दिखण में लागे कोनी,
0: क्योंकि कर भी हूं सोरो रहा हां बस मन भी बात कह रही कि हमें इंसान एड़ो होयो कि आप रो सुख पहले दिखी
1: पहले दिखी पछे बात बीजे री मानव री तो छोड़ो हमें वो मानव री कोनी रखे तो थे सोचो पक्षी पशु पक्षियों री की कम ध्यान रखे। तो हण थे देखो जगह जगह बड़े बड़े इमारत बन गए है जंगल है जो को कट रहा है खत्म हो रहा है, तो ए जो को पक्षी है ए जो को जानवर है वो बेचारा आश्रय कित बना से, तो वो रहे वास्ते। और देखो अपर जैसलमेर में ना एक खींचन शहर मतलब वो है गांव है वो थे नी प्रवासी पक्षी है कुर्जा जो को एक हावी सर्दी और में झुंडरो झुंड आवी और वो आप रे इत चार पांच महीनों में
0: अच्छा
1: आप रे जो को भी वो अगर आप रे अंडा देना है कॉकर भी कर आप रे प्रजनन क्षेत्र बनाना है तो ये टाइम में वो सब कुछ कर ले भी, और हणो जब गर्मी आएगी नहीं तो पाछा पलायन कर आप रे देश पाछा बन जाए। तो यही जे कि अपर एक सा भी जो को पक्षी है वो बाहर विदेशों में ना जाए वो था आप रे प्रजनन केंद्र बनाए और पाछा आप रे टाइम में पाछा भारत में ना आ जावे, तो ए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये वास्ते मनाए गए है ताकि एक दूसरी जगहों ना जो को पक्षी है नी वो आपस में ना आदान प्रदान करता रहे
0: भाई, यानी कि उड़ उड़ के आप बीजी जगह जावे जो को जगह सहूलियत आ।

0: घोसला बना सके जी जगह वो आप अंडा दे सके और जी जगह पानी का सरोवर नजदीक हुए। तो एक बार है ना था नीतू बहन अगर गौर करी हो तो थोड़ा दिन पहले अखबार में या मैं तो कह भी पढ़ी हो तो या स्कूलों में भी के भाई जितो ज्यादा हो सके थे पानी का परिंडा लगाओ पक्षियों के वास्ते।
1: आजकल देखो नहीं लोगों में जरूर थोड़ी
0: था होना चाहिए
1: एक ही नहीं को जेठ बैसाख रो महीनो हो गई जो अपर धर्म कर्म रो हो गई तो ये महीने में ना लाए भी खूब पड़ी लेकिन हाँ यह है कि मानवता थोड़ी सी लोगों में ना जाग गई है तो वो पक्षियों के वास्ते छोटा परिंडा भी लगा भी और साथ में ना उमर चुग्गो जुगो हुई दाणो वो भी करने रख दे ताकि भूखा नहीं रहे
0: घो फर्क पड़ जाए पक्षी उड़ता डागोड़ में रख सके
1: जी जी।
0: आप तबले रे महीना पानी अगे दे देखो तो ए जो हुआ ने जो मोटा मोटा दरखत होता वो में डोरियो सु एड़ा
1: मिट्टी रा पात्र
0: बना के और वे तो उई में की दरखत में जाए तो पक्षी बैठता और आप तो तबले में आए पानी पियो पाछा उड़िया आप घोसले में और हमें घोसला बनावनी जब समस्या है पक्षियों ना तो जो हमें मोटा मोटा घर रहता हो गया बिल्डिंग बने मोटे मोटे तो वो आषाढ़ पाषाढ़ के जो कोई गैलरी लगोड़े या कोई
1: खूनो कोचरो ढूंढ ले
0: भी तो हमें वही जगह अगर पक्षी घोसला बनावे भी है तो हमें वास्तु न ज्योतिषी इतना आना वापर गया है खूब
1: जी
0: तो वही में की भी ऐसा संदेश जावे कि घरों में घोसलो नहीं होना चाहिए ओ अशुभ हुई ओ ए नहीं यो नहीं होना अरे वो तो पक्षी है अबोला जीवे के भी आप रो वो आप रो स्थान बनावे अगर स्थान बना के आप बैठे तो एडो कोई भी नुकसान जड़ी बात अपन को समझ में आवे लेकिन सोच बदल गई
1: जी।
0: पर अपे तो है पढ़ियारी में आप दोनों ने कहना चाहो कि ये गर्मी रे महीना देखो सुरक्षा रखनी आपरे परिवार की तो जरूरी है जी रोज बात करो और बात तो की करो तो हमें देखो सपनो डा है कि ये लारे महीनों बाहर नहीं निकलनो जितो हो सके आप जाप तो राखनो पर आपरे साथ साथ में घर में ढोल ढगा है जो अबूला जी है
1: पूरा ध्यान
0: जो बोल नहीं सके वो अगर ढोल ढगा भी रख ले से एक आर तो कोई मेहाली बहन हो सके गा दूध दे पड़ी दो बेचारी अगर तसी है तो पानी पानी भूखी है तो उन्हें की खुआ पर पशु पक्षी पक्षी है नी ये सो देखो कुछ लेवन ना कुछ भी गुण पर है तो वही जीव अगर आना कोई हाडू आए अपनी बरंडी माथे बैठे मीठो बोले तो कड़ो बढ़िया लगे अरे नहीं तो अगे तो गीत हो तो आडू मीठो बोले तो कोई
1: कोई मेहमान मेहमान
0: आसे तो कबूतर बड़े आगे चिट्ठियां बेचता तो कबूतर भी एक अड़ी जाती है के हमें जो हणे एक और भी नुकसान हो गया हमें हर जगह अपोरे जो है लाइनों बिछ गई है तारों लग गए यो तारों से भी अपोरे पक्षियों ने नुकसान हुई तो कैद भी अपोरी है मानवता रहनी चाहिए कि कैद भी कोई पक्षी अगर घायल अवस्था में अपना दिखे या कोई फतक तो दिखे या कोई तुरसो दिखे तो अपना चाहिए कि आप मेरी सहायता जरूर करो आप पानी जरूर पाओ और हमें तो देखो ये अस्पताल भी बनी है उन्होंने इंजेक्शन भी जा लगा रही उन्होंने दवाएं दे और उन्होंने मतलब खत्म को नहीं होने दे जिंदा रखने पर कई सारी कोशिशों पर सरकार कर रही है पर सरकार के साथ साथ में आम जनता
1: पूरा सहयोग कर
0: सके मेरी लगे ही नहीं जल्दी कोई कार्यक्रम सफल हो जाते रोज रोज योजना ले आओ तो वो योजना और भूंगली हो जाए जब जनता सहयोग नहीं करे तो
1: जी बिल्कुल सही
0: बात है ना
1: जी।
0: तो पक्षियों ने भी अपोरे पेड़ मानवता बने पेड़ फर्ज बने के अपे अपोरे परिवार के साथ साथ में ये जो जितना भी अबोला जीव धरती माथे है मोरी हो सके जितो सहयोग करे जितो हो सके मोनो बचाव की कोशिश करे क्योंकि वो में भी जीव इंसान रे जितो रे जितो ही जोई
1: जी
0: है नी। तो सागेड़ी से लाए पड़ी अड़ी भयंकर जाना यो नहीं निकलेगा मैं तावड़े में लोटो ले निकले पक्षियों पानी पाया एड़ो उमदो काम भी नहीं करे
1: जी।
0: ये तावड़े में तो सिर्फ और सिर्फ संगीत सुने
1: तो थोड़ी मन की बात जान गई कि थोड़ा मैं सुनो है संगीत तो आलो अपन लोक संगीत की दुनिया में थोड़ा सुनो बढ़िया जोड़ो कूटरो संगीत

0: में आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: वाह सावानी तू बेन थो तो पालो जोर पो कटाय पण ई उनाळे में पालो भी जो दूर कटी से बात सा। देखो अपे आज बात कर रहा था महाराणा प्रताप री के भाई वीर पुरुष है और आज मोरो जन्मदिन है। पर एक बात और भी है के एड़ा वीर पुरुषों ना जन्म देवन वाली कौन हुई के माँ
3: जी।
2: एक माँ जद टाबर पेट में हुए नहीं तुम्हें पूरे समय सुले और बच्चों हुए पचे वीर परवरिश करे उन्हें मोटो करे जितनी तक आप रा विचार शुद्ध रखे बढ़िया रखे संस्कारवान मन में अच्छी बात ही सोचे तो वीरो असर टाबर मत है
3: घणो पड़े।
2: जी जी घणो पड़े। अपर ए शास्त्रों में भी लिखोड़ो है कि एड़ी वक्त में भागवत बाचोगे गीता बाचोगे अच्छी अच्छी बात करो भली भली चीज खाओ। अच्छा खाली बाचण को नहीं करूँगा बाचता जाओ खाओ कहीं मत।

0: तो उमे की को ना फिर हर चीज रे बगा सबसे पहले तो पौष्टिक आहार जी चाहिए जी, जी। तो जब एक माँ होशियार हुए, समझनी हुए, चतुर हुए, सुजान हुए और स्वस्थ हुए सबसे पहले, तो ही जो एक स्वस्थ संतान पैदा कर सके
1: जी। तो जो आज बात करी थी, मन लगे मेरी बात मन में हुई और थे पहले जान जाओ रहा। ये बात सु मने याद आया कि आज सुरक्षित मातृत्व दिवस भी कह सको
0: पखवाड़ा तो हर रोज मनाओ,
1: देखो मनाओ ही, पर आज 9 तारीख है।
0: अच्छा,
1: और जो महीने री 9 तारीख हुई नी वे तारीख ना जो प्रसूता में मतलब प्रसूता ना गर्भवती महिलाओं भी उम्र स्वास्थ्य री जांच करनी जरूरी है।
0: अच्छा,
1: तो अगर जो गर्भवती महिला है वो अपर कन्या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है या सरकारी अस्पताल में ना जाए के आपरी जितनी भी जांच हुई वो उम्र निःशुल्क हुई, 7 महीना दूसरी तिमाही दूसरी और तीसरी तिमाही में ना जानो चाहिए। और वे टाइम जो भी उन पोषण संबंधी अगर कोई असुविधा हो रही है या जांचो हुई नहीं तो उन्हें सब पता चल जावे कि थोड़ा बच्चो महीना कितो स्वस्थ है, जिको अगर चीज है तो थाना टाइम पतो चल जावे और 7 महीना थाना ने दवाई भी जे भी हुई अनुसार दे देवे ताकि थारो जो महिलो स्वास्थ्य है वो सही रहे और 7 महीना थाना जो पौष्टिक भोजन है वो थाना की करनु है उरे बारे में भी पूरा चार्ट दे देवे कि थारो ए डाइट प्लान होना चाहिए। तो वे सु की रेवे कि जो भी गर्भवती महिला है और जो साथ में गर्भस्थ शिशु है वे री सुरक्षा बनी रहे,
0: बनी रहे सही जी।
1: और ए पूरे टाइम तक यानी कि 9 महीना तक प्रक्रिया चलती रहेगी और हर महीने री 9 तारीख न जाए आपनी जांच
0: कर। आज 9 तारीख है,
1: आज 9 तारीख है और थे देखो मैं हूं कोई नहीं, मेरी मन री बात पहचान जाओ
0: सही हुआ। आज 9 तारीख है तो मतलब हर महीने री 9 तारीख,
1: हर महीने भी 9
0: निःशुल्क जांच हो जाएगी नहीं तो मतलब आज शहर में जो अस्पताल है आप अस्पताल जाओ
1: और गांव में ना
0: स्वास्थ्य केंद्र हर जगह बनोड़ा
1: है।
0: तो देखो नहीं तो मेरा अपोय सरकार कितना बढ़िया प्रयास कर रही है
1: जी जी।
0: हमें उरे बावजूद जद हालांकि घणो सारो फर्क आयो जो को गर्भवती महिलाओं रे स्वास्थ्य रे प्रति जो को सजगता वापरी है नी ये सजगता सु वास्तव रे महीना आप देखो ही तो खूब सारो फर्क आयो, कोई तरीके रो नुकसान हमें महिलाओं को नहीं हुए, नहीं तो बीमार होता टबर कदे कदे हाथ में को नहीं आता कदे अध बीच में तबीयत खराब हो जाती एड़ा सब घनी चीजें होती पर हमें ऐसा को नहीं हो रही।
1: तो ए था जो बात करी ने तो मात्र और शिशु दर मृत्यु दर कम करने वास्ते तो ये सु हालत बहुत ज्यादा फर्क भी आयो है थोकयो जो कि ये सु अपन पर जो स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारी मिल जावे तो थोकयो कि अध बीच में टबर गिर जाओ
0: तो केस घना होता
1: और जब बच्चो पेट में हो तो मारी भी घनी बार मृत्यु हो जाती। तो ये सब चीजों सु बचाव करने वास्ते सरकार द्वारा इतना कार्यक्रम चलाया गया
0: चला
1: और वो है कोई कि अपर जो ग्रामीण महिलाओं है चाहे शहरी महिलाओं है वो ना ये पूरी पूरी जानकारी रखनी चाहिए और आप री टाइम टू टाइम जाए चेक करवा लेना चाहिए तो सब बढ़िया रहे और स्वास्थ्य
0: यानी कि कोई निःशुल्क जब सब चीजों अपन मिल रही है तो कोई भी नयो कौम हम जो कोई नवी माँ बन रही है पहली बार माँ बन रही है तो कोई भी नवी चीज अगर आप महसूस करो या देखो है तो उए में पूछताछ करने में देखो पैसा तो लगे को तो हर एक चीज ना कहे ना कि हर एक पग फूक फूक रखना चाहिए। तो वास्तव में मोइना हमें समय एड़ो है कि अपन बाकायदा आपरी सुरक्षा और आप रे होने वाले बच्चे री सुरक्षा सबसे पहले रखनी चाहिए। अच्छा उरे बाद में अपे अपर घर में जो बुजुर्ग महिलाओं है वो ना भी सलाह नीतू बहन जरूर दे सो के हमें ओ ए आली राग नहीं आला पे के भाई पहले हो रहे हो तो पहले यो हो तो वो चीजें हुई बात सही है। जद वक्त अलग तो जदरा हवा पानी अलग था जदरा खान पान अलग था हमें भी वे तरीके से आप चल सको ये बात को नहीं कि हमें वो बिल्कुल तरीको खत्म हो गयो खत्म को नहीं हो घर में काम काज महिला आराम से करे कोई तरीके यो को नहीं कि डॉक्टर अगर जे उन आराम रो नहीं कहो आराम करे तो गलत है काम करना जरूरी है क्योंकि काम करता रहे तो शरीर एकदम लचीलो बन रहे और वो लचीलापन में आजकल जो ऑपरेशन हुई हुई नौबत को नहीं बच्चियों ने जरूर बात एक गौर करनी चाहिए और कदे कोई ऐसी परिस्थिति हो गई कि ना डॉक्टर कह दे कि आपको आराम पूरा करना चाहिए तो देखो कोई कारण हुए तो डॉक्टर कारण को नहीं कहे। तो अगर कोई बच्ची ने हमें जो आराम रो कहे हुए तो पछे अपोरी महिलाओं ने चाहिए अपोरी बहनों ने चाहिए कि वो बच्ची ने जरूर आराम करावे
1: जी
0: और वे खान पान रो और वे

0: जिके तरीके से रेवन रो अगर डॉक्टर सलाह दे तो उसे तरीके से ना जरूरी रखनी चाहिए, नहीं तो पछे नुकसान उठाना पड़े।
1: बिल्कुल।
0: और सबसे कॉमरी बात है कि जितो अपारो खान पान बढ़िया हो से, जितनी अपारो रहन सहन बढ़िया हो से, जितनी अपारी साफ सफाई बढ़िया हो से, उतो ही बच्चों हष्ट पुष्ट भी हो से और बढ़िया भी। और जब गर्भ बच्चों जब हुई उसी टाइम भी घनी दिक्कतों को नहीं आवे, नहीं तो पहले समय में तो खूब सारी दिक्कतों आती। अपोरी माताओं बहनों ना तो धन्यवाद है जो वो अड़ी परिस्थितियों से गुजर गुजर के और ये सब काम कर जाती। वाकई में उन्होंने तो सम्मान करना चाहिए अपनों और मन से धन्यवाद करना चाहिए कि अपोरी जो पहले वाली पीढ़ी है वो कोकर ये विकट परिस्थितियों में भी आपरा ग्रस्त भी चलाया है और ऐडा सूरवीर है जो भी पैदा करी है।
1: जी।
0: तो हमें आज री जो बच्चियों अपन हो तो आप एज बात कर सो कि आप री सुरक्षा रे साथ साथ में बच्चे री सुरक्षा रो ध्यान जरूर रखे और आप रे खान पान रो भी ध्यान रखे। नहीं ये बढ़ती गर्मी में घर में माए थे तो देखो यो नहीं करो को पछे ओके ओके आपने पोखी
1: सब रो पूरो पूरो ध्यान रखे
0: पहले नहीं करे कि भाई हमें हूं तो मां बनन वाली हमें लोटे को भरो नहीं। ए भी तो सोच कदे कदे गलत भी हो जावे।
1: जी।
0: कदे कदे नहीं तो बहन देखो है आजकल ही हवा है नी कोई चीज री सुविधा अगर ज्यादा मिल रही है तो वो गलत फायदा भी उठाए तो वो बिल्कुल नहीं उठाए के क्योंकि वो में नुकसान खुद नहीं जाए। इस वास्ते आप रे साथ साथ में पूरे परिवार रो भी अपोरी बच्चियों ने ये जरूरत है कि ध्यान रखे और ये गर्मी रे मौसम में बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकले और अच्छा बढ़िया साहित्य हुए जो पढ़े और पासाड़े अपनो आप रो जो सुरीलो संगीत है राजस्थान रो वो सुने।
1: तो मन लागे बड़ो गा आपनो सुनो है बढ़िया जेड़ो लोक गीत तो सुनाऊं थानो बढ़िया जेड़ो लोक गीत क्योंकि जद अपन बातो करो ही नहीं तो साथ में जद ये संगीत री थाप आए जावे नहीं तो वो सुकर की अपन रे खुद रे मन में एक अलग तरीके रो
0: नवी बात उठते
1: जी। तो गाना सुनाऊं बढ़िया जेड़ो लोक गीत।

0: वाह साबा नी तू कन फुटरो से गीत सुना दियो था जी सोरे रो ना मैं जी सोरे सु जासो तो पाचा पणियारी में सोरा आसो कोनी
1: जी सही
0: मैं अपना बखत होरे पूरो तो बेनो सु सीख ले सवाल कर सा राम राम।

0: आर के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य की पहली बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: हमें शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति हमें अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करीब। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्र पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्मीर नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुँचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृह मंत्री

0: अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार 3री बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉक्टर जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
2: इंडिया हैज ट्रेडिशनली हैड
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
2: क्लोथिंग एंड स्पोर्ट्स और फूड हैबिट्स एंड ट्रेडिशंस।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
3: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित है उनको समझौते के आधार पर विस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुड़े बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे।

0: श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में सम्पन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है ताजमहल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।

0: निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा।
1: कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की है।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने कितने

0: तुझसे शिकायत होगी मेरे महबूब।
1: किशोर कुमार की आवाज थी, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

0: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: आवाज से है।
1: मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम गंगा जमुना, शकील बदायूनी की बोल, नौशाद साहब की धुन।
0: होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

नैन लड़ गए हैं तो मनवा माँ कथक होई बेकरी, प्रेम का तुझे है पटाखा तो थमक होई बेकरी, नैन लड़ गए हैं तो

मन में बसई बात बुरा का होई है, रूप को मन में बसई बात बुरा का होई है, कोह से प्रीत लगई बा, कोह से प्रीत लगई बात बुरा का होई है, प्रेम की नगरी में कुछ हमरा ब्याह होई गकरी, प्रेम की

नगरी माँ कुछ हमरा यहाँ कहो बेकरी नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कथक हो बेकरी प्रेम का चिट्ठी है पटाखा तो धमक हो बेकरी नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कथक हो बेकरी।

होई गवा मन मा मोरे तिरछी नजर का हल्ला, होई गवा मन मा मोरे तिरछी नजर का हल्ला, गोरी को देख बिना गोरी को देख बिना निंदिया न आवे हमका, फाट लगे है तो करज मामा खटक होई बकरी, फाट लगे है तो करज मामा खटक होई बकरी, नैन लड़ गई है नैन लड़ जाई है तो मनवा मा कथक होई बेकरी, थई थई थई थई थई भाक दिनक दिन भाक दिनक दिन भाक दिनक दिन भाक दिनक दिन भा, आंख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: आंख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है, प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा बिगावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कटक होई बेकरी। प्रेम का चुटी है पता का तो धमक करी,
1: नैना जब मिली है तो भैया मन में कसक होई दे करी,
2: नैना जब मिली है तो भैया मन में कसक होई दे करी,
1: नैना जब मिली है तो भैया मन में कसक होई दे करी।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे हैं। फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: शीशा दिल इतना ना उछालो, शीशा दिल इतना ना उछालो, ये कहीं

कदम चलती झूमती ठंडी हवाएं कहती हैं, तड़पती नाजुकी चंचल अदाएं कहती हैं, सवारों जुल्फ़ों

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार शंकर जयकिशन थे। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब खत्म होता है।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
1: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेही अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये है विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अड़िया, इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें, ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो है भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया आपकी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सके। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें, ताकि हम सही नाम आप तक पहुंचा सकें। चलिए आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

तुम्हारा नहीं, जो

ये स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था लैला मजनू।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और उनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी।

खाना नहीं पीना नहीं तुम बिन जीना नहीं, जीना नहीं जीना नहीं तुम बिन जीना नहीं, जीना नहीं हाय जीना नहीं।

0: vida e
1: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इस गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है दाग।

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की।

मर ले मेरा क्या, पर देख तू जो रूट कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी।

नाम कर कर जाऊंगा बदनाम तेरा। तौबा तौबा फिर क्या होगा कि याद मेरी दिल से न कर पाएगी, तेरे जाते ही तेरे आने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा।

मेरी इस प्रेम कहानी का, जो भी हो मेरी इस प्रेम कहानी का।

बाद में तू एक रोज पछताएगी ये रुत प्यार की जुदाई में ही गुजर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी।

0: मस्ताना मौसम आया है, दीवाना मस्ताना मौसम आया है, ऐसे में तूने दिल को धड़काया है। माना अपनी जगह पे तू भी आदिल है, पर यारों से तेरा बचना मुश्किल है। तौबा तौबा फिर क्या होगा के प्यार में।
1: मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहेगी। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।
2: मन चाहेगी।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: चिट्ठी ले लीजिए।
1: आसाम पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कन्नस्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
2: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा, अब तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
4: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: छोटा नंबर पता है श्रीमान,
4: नंबर 11 पश्चिमी गली।
3: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
4: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
3: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
4: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा, आगे पढ़ो।
3: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
4: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियादे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
3: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: जोगनंद स्वामी, आज मेल लेट थे क्या?
1: हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब। अब तो सारी की सारी डाक गांव में बंट जानी चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर हैं।
0: इस गांव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट।
1: नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है?
0: अरे वाह कंदस्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गुड़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना। मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए, मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई, यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर? हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंदस्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंदस्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछे और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है? उसी की बात कर रहे हैं।

0: शहनाब?
1: हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था। जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहाँ आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया। सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है वो। 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
2: अच्छा, तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
2: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाकखाने का नियम तो यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसकी डाक उसे फौरन मिलनी चाहिए।
1: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
2: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं? और हाँ, उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
1: ये लो, ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई श्रृंगारम, क्या हाल चाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज। क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई, मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है, इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा? मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। साले लगाओ।
0: अरे जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई श्रृंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला। जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई, अपने राम का भी तो यही धंधा है। मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल कह रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है? अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मुर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: श्रृंगारम, हाँ? श्रृंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त, फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है। अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कुछ झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ। सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो, अब पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब, जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है? कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी।
2: अरे मारी, भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना। मेरा नाम श्रृंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह, ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम, उन्हीं को देना है मुझे। मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अखड़।

0: बने फिरते हो, लेकिन शायद तुम श्रृंगारम को नहीं जानते। जिस शिव कामी के नाम ये मनियारो है, वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनियारो फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
1: वरना क्या होगा?
2: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे? ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे। अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
0: हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ लाओ।
1: सिंगारम, ये न भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं। तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा। अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
2: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
0: जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहां? देखना ये श्रृंगारम कैसे

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
0: हाँ लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। भगवान की कैसी लीला है। अच्छा आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा न कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूँगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहाँ कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती।
0: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
1: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
0: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
1: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ आओगे ना बेटा?
0: आऊंगा माँ जी।

0: अरे जरा देख कर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन शिंगारा? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी न पिया कर। ओह मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम।
0: अरे अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस काम में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा कब चलता फिरता नजर आ?
0: इस तरह क्यों पुकारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा? कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये उल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। चला जा यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे

0: मेरे सामने वो बदमाश शेखराम खड़ा है। अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है। आप क्या करो, सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं बाघ थोड़ी हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो और
0: मुझे घर जाना है। नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है, तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है, रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा।
2: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हूँ। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
2: अच्छा?
0: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी, ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकूंगी।
2: अच्छा ये बात है।
3: यहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे। तीन बार एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
2: अरे बकवास बंद करो डाके, गाँव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
3: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊ तो चलो फिर कर दूंगा। क्या समझ रखा है तुमने?
2: अगर मैं अपने दल बल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
0: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
4: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
0: जी इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई, सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
4: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
0: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
4: हाँ हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
0: लेकिन मामा धम का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
4: ओह तो तुम्हारी माँ नहीं है।
0: आप तो बाप भी

0: नहीं, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं, और वो बदमाश शिंगारा मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
1: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
0: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
1: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
0: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
1: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने। चली गई, कितनी सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये, छी छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है। जब उसका मंगेतर है तब पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़की के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था।
2: माँ जी।
3: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
2: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
3: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
1: अरे ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
3: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
1: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
3: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
1: मैं लाता हूँ। दवाई?
3: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
1: ये आप क्या कह रही है माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
3: बेटा, तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
1: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्मों तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
3: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं, जरा जरा मेरे पास आओ।
1: लो माँ।
4: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया, हिंदी अनुवादक थे PS कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
5: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: la piclae am, honit bag para la piclae amba.
1: Oye, Hindi gana.
0: Oh, pankh hote tore aati re.
1: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी। हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
2: क्या बात है,
3: बहुत बहुत शुक्रिया
2: प्रमिला जी। सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी।
3: जी,
2: तो हम तब से बात शुरू करें
3: जी
2: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।
3: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
2: जी,
3: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
2: हाँ।
3: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था।
2: हाँ, हाँ।
3: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसे नहीं बनने वाली।
2: हाँ।
3: तो बहुत एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी है, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।
2: वाह।
3: तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें फिर नाम क्या रखे।
2: हाँ।
3: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे, अशोक जैन करके
2: जी, जी।
3: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
2: हाँ।
3: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
2: वाह वाह
3: जी।
2: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें?
3: पहला शो 1975 14 अप्रैल
2: जी,
3: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन।
2: हाँ, हाँ।
3: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
2: क्या बात है
3: जी,
2: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
3: मुहूर्त माना, तो
2: क्या बात,
3: हमारे 3.5 मुहूर्त बोलते हैं अच्छे जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी पाड़वा।
2: क्या बात है
3: जी।
2: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी?
3: हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ। जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था।
2: हाँ, हाँ।
3: तो मेरे लिए तो उतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कुणा से, वो जो गाना है मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कुणा। मुझे याद है छोटी सी किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी
2: जी,
3: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की। तो मुझे देख के ऐसे हो गए, तो क्या हुआ उसको, तो हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कोना से ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे बोली तू मेरे लिए गाओगी, तो मेरा हाथ जरूर गाओगी। बहुत मजा आया उससे, बच्चों से लेकर।
2: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का
3: जी,
2: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है?
3: इतना सा तो नहीं, लेकिन एकदम मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, अजीब दास्तां है ये, हाँ, इस तरह

0: ये सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल, तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी, मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी। आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है जरा मुश्किल है, तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगे?
0: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है मुझे वो बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो।
1: क्या बात,
0: आई लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा।
1: अलग अलग गायिकाओं ने अलग अलग मौके पे
0: ऐसे मैं मेरे शो में एक मेडली करके आइटम पेश करती थी, अलग अलग गायिकाओं के गाने हुए उसकी झलक, उसमें मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने एक एक अंतर वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम
1: जी। तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं। मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: मुंबई।
0: अच्छा, मुंबई,
1: मुंबई में, गिरगांव में।
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई की
1: सब चाल थी, सब ऐसे।

0: तब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में।
1: अच्छा।
0: बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को,
1: जी
0: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था, तो
1: हाँ
0: बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी। इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था,
1: जी
0: मुझे
1: जी
0: गाने तो पसंद थी मेरी, तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरु के हिसाब से बहुत अच्छे थे,
1: अच्छा
0: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में,
1: अच्छा
0: तो इसीलिए जाना हुआ।
1: हाँ
0: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और
1: जी जी
0: गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे
1: ओ
0: अगर दादर में क्लास होता
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: बहुत ही स्कूल में था, और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का,
1: अच्छा
0: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया।
1: वाह
0: पहली बार मैं बम्बई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि
1: जी
0: वहां म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था,
1: जी जी
0: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था
1: हाँ
0: दिल्ली में,
1: हाँ
0: तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
1: संगीत शारदा
0: संगीत शारदा,
1: जी जी
0: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी।
1: ओ
0: जी मेरी
1: अच्छा
0: आवाज जरा भारी थी, जारी थी,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: पुरुष के गायक के लायक थी,
1: अच्छा
0: और हाइट भी अच्छी थी, तो
1: जी
0: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
1: जी जी
0: नारद का रोल किया है स्कूल में, तो
1: हाँ
0: स्कूल
1: चूंकि ये
0: के
1: महिला विश्वविद्यालय है
0: महिला
1: तो
0: विश्व नहीं,
1: सारे
0: वो रेस स्कूल की बात कर रही हूँ,
1: अच्छा
0: महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था,
1: अच्छा
0: तो वो हमने उधर किया
1: ओहो
0: यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली
1: हाँ
0: दिल्ली गई यूथ
1: क्या बात
0: फेस्टिवल के,
1: अच्छा
0: बाकी
1: अच्छा अच्छा
0: फ्रेंड्स वगैरह थे साथ,
1: हाँ
0: बहुत मजा आया दिल्ली में, और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं, ऐसा हुआ था,
1: क्या बात है।
0: बहुत मजा आया।
1: उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना
0: जरूर
1: दीजिए।
0: जरूर।

0: वाह वाह क्या बात है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
2: नहीं करती, पुरुष
1: तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं, और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
2: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
1: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका इस नाटक में निभाई थी।
2: हाँ जी।
1: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
2: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शारा में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी, पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया शायद, फिल्म डिवीजन भी चालू है कभी पता नहीं। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए। फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में एक बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ, और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
1: अच्छा।
2: 42 साल का मेरा जन्म है, और 58 को शादी हो गई 16 साल की। तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई, तो पहली बेटी हो गई, तो 1962 में
1: जी
2: उसका बेटी का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने,
1: जी,
2: कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए

0: करो, एमए इंटरन म्यूजिक था एसएनडीटी में, तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई। और घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक होती है जाओ कि नहीं, तो उस तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर, और फिर एमए किया, और फिर 68 में पहला मौका आया दलत साहब के साथ।
1: अच्छा।
0: तलत साहब के साथ एक नंदी रुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे, तो वहां पे मैं इधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी रुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्हें पूछे कि आप चलेगी क्या? मैं चलेगी
1: दौड़ेगी कूदते
0: जाऊंगी कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ऐसा अच्छा मौका मिला, 3 महीने का वो टूर था हमारा,
1: क्या बात,
0: और 2 बेटियां, एक 4 साल की एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की। मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से। और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लेजेंड्स है
1: जी जी,
0: उनका वहां इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछा, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने, ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे। बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला।
1: तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं,
0: मराठी में गाने थे
1: जी जी।

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं। जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: आपने वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ,
1: गए। हाँ। फिर उसी को नंदी दुगल जी थे
0: जी
1: प्रमोटर अगली बार। तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा। तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया हमने, टूर किया।
0: अच्छा,
1: ईस्ट अफ्रीका का। उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के। तो उन्होंने पहले ही शर्त डाल के मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा। मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट का। तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती
0: जी, जी।
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा भाई की रेंज, तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके।
0: अच्छा।
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरियबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था।
0: अच्छा।
1: दम मारो दम। तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी
0: जी, जी।
1: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे।
0: अच्छा।
1: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस किया उनको
0: जी, जी।
1: इतने बड़े, बहुत बहुत ही बड़े सर, सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहां शेर कैसा है, इधर उधर इधर ऐसा घूमता, बहुत अस्वस्थ रहते थे
0: जी, जी।
1: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, अब्दुल मेरा टॉवल का, अब्दुल मेरा ये का, अब्दुल और एक बार स्टेज पे गए छुट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे कि आपने तीन चार गाने गा के ये लोगों को सामने से सुनते बैठू, बहुत ही भाग्य था मेरा इस बारे में।
0: किशोर दा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ?
1: ड्यूएट नहीं गाया,
0: नहीं गाया। अगर किशोर दा को याद करने के लिए कोई गीत हम सुने तो कौन सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है, वो
0: मतलब
1: दूसरों के
0: टीका टिप्पणी की आप जो आप
1: टीका
0: कहें।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई।
0: हाँ
1: हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों को टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे
0: जी
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ओहो
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी जी
1: तो ये जिनको मालूम नहीं कि
0: हाँ
1: इतने कितने कष्ट है या इतने कितनी कठिनाइयां हैं,
0: जी
1: तो लोग क्या, हाँ, वो दूसरे के गाए हुए वो जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता
0: हाँ
1: जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी
1: लोगों ने कहा कि अब तू खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बंद के इतने साल हुए, कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे
0: अच्छा
1: एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या
0: जी
1: प्रोग्राम
0: जी
1: किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं का। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा
0: अच्छा
1: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
0: हाँ हाँ
1: तो वो शुरू किए। बाद में किसी ने बोला कि वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में।
0: हाँ अच्छा
1: मेरी सब सहेलियां, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
0: ओह
1: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता
0: क्या
1: है,
0: बात है,
1: कुछ लिखा हो। कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया
1: तो
0: पे।
1: सोशल मीडिया पे,
0: ओहो
1: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
0: क्या
1: हूँ।
0: बात है।
1: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो
0: हाँ
1: वो तुम्हारा करके गाती हो। वो
0: हाँ
1: प्रमिला दादा का गाना लगता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
0: जी
1: पहले
0: जी
1: गाने,
0: जी
1: अभी नई आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक
0: हाँ हाँ
1: जाती है।
0: हाँ
1: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा
0: बराबर
1: सा मैं अपनी वैरायटी को, जो मुझे ज्ञान मिला है इस
0: जी
1: क्लासिकल
0: जी
1: म्यूजिक का,
0: हाँ
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो तुम्हारा हो जाता है, जो मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये
0: जी
1: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा। करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके
0: ओहो
1: हारमोनियम पे
0: क्या
1: सिर्फ
0: बात है।
1: भेजे। कभी
0: अच्छा
1: कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके
0: जी
1: साथ
0: जी
1: गाए,
0: जी
1: लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है,
0: जी
1: मुझे भी
0: जी
1: अच्छा लगता
0: हाँ, तो
1: है।
0: इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
1: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका
0: अच्छा
1: याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका
0: हाँ हाँ
1: याग्निक का,
0: अच्छा,
1: मोह मोह के धागे,
0: मोमो के धागे, दम लगा कर है इस फिल्म का
1: दम लगा
0: गाना
1: के
0: है।
1: है
0: जी
1: उसका,
0: जी ये
1: हाँ,
0: लेकिन आपने ट्राई किया है, आपने गाया है हारमोनियम पे,
1: मोह
0: तो
1: मोह के है। और
0: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें हाँ। प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना है, ये आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: क्या? नकल नहीं किसी,
0: नकल किसी नहीं, की नहीं, यानी मिमिक्री नहीं,
1: मिमिक्री नहीं।
0: अच्छा,
1: अपनी गीता दत्त के गाने बहुत मुझे पसंद।
0: लेकिन आशा जी का गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज में भी गाना है?
1: तो अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता है
1: क्योंकि मौजूद उन्होंने गाया हुआ है, मतलब शब्दोच्चार या कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी उनकी तरह से, तो वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप
1: नॉट नकल करने के हिसाब से नहीं आता था वो।
0: जी जी,
1: क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट, क्यों की लता जी के रूप में ही मैं गाऊं, ऊपर जाके फिर वो आवाज डबल हो जाएगी, उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज
1: में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही हूँ।
0: जी जी जी, बिल्कुल अनुभव।
1: क्योंकि आजकल वो जो कैरियों के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी,
1: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम पाओ, और इतना आसान नहीं है। मैं तो एक ही लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी, बहुत सारे निकलते थे गली चौराहे में।
0: क्या बात, तालीम बहुत जरूरी है, क्लासिकल
1: बहुत ही
0: सीखना कितना जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3-4-5 साल तो, फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक
0: जी,
1: लेकिन आवाज की तैयारी, जो हरकतें मुरकुतें, फिर अपने गले सरियत तो कोई अपने हिसाब से लेता है, मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, ओरिजिनल उनका गा के

0: जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है कुछ जो वैरायटीज
1: हाँ।
0: वो करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
1: जो ओरिजिनल है पहले
0: वो तो गाओ, नकल न नहीं आती उसमें, लेकिन उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है और वो हिसाब से बहुत जरूरी है। आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अभी।
1: बिल्कुल सही।
0: तो ये जो बड़े बड़े जो ने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में,
1: जी जी
0: वो क्यों करते थे इतना,
1: बिल्कुल
0: ऐसे गाते थे ना।
1: सही बात, बिल्कुल सही। मन्नता की बात करते हैं, आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड किया, संगीतकार थे श्री रामचंद्र, तो मन्नता को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किए,
0: एक शो किया बड़ौदा में।
1: अच्छा,
0: मन्नता ने मुझे एक मतलब एक उनको मैंने पूछे था, मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे, तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है,
1: जी, जी।
0: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, तो फ्लैट लगेगा और
1: जी,
0: भाव
1: जी।
0: नहीं आएंगे उसमें, तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी के आवाज में जाता होता है किसी के आवाज में, तो मैंने मन्नता को पूछा कि मन्नता ये कैसा लाने का अपने आवाज में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें ऐसा ऐसे आघात करते जाओ।
1: अच्छा।
0: और मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब रियाज करके,
1: क्या बात,
0: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला
1: हाँ।
0: कि ज्यादा नहीं करना, लेकिन कंप होगा तेरे आवाज में। बहुत ही
1: अच्छा।
0: उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
1: जी जी,
0: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च च जो मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
1: जी जी,
0: बांबू चा वना च ज ज बहुत से बांबू चा वना झऱ्या चा काठी येशील सजणे सजणे माझ्याच पाठी,
1: बिल्कुल उनके लिए डंग तुस्ते
0: बहुत बहुत, तीन बार हुआ टी चार बार हुआ इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा, अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ, तो उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं
1: बराबर
0: लाइन में।
1: क्यों ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें,
0: हाउस ऑफ बैम्बू,
1: जी जी।
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर, नंबर 54 जिसे मॉड्यूलेशन की उसके कम करना उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है,
1: जी जी जी।
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर, हो बांबू से घर बांबू से दार, बांबू ची जमीन पिवळी शार, बांबू से घर बांबू से दार, बांबू ची जमीन पिवळी शार, बांबूचा घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला लला लला, झुलवित राहील पापा पापा तुला ने मला, नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर, नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर
0: उनका तो क्या।
1: वाह वाह। मन्नता अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं,
0: जी जी,
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है,
0: हाँ।
1: मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए जो लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने,
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, क्लासिकल गाने हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उसमें बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन,
1: वाह
0: बहुत अच्छे, थोड़ा सुना दो।

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो भी एक अंतरा है माँ का दिल बनके कभी तू सीने से लग जाएगा और कभी नन्ही सी बेटी बनके आ रहा था।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छा
0: लिखावटी गाना।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते संगीतकार।
0: जी जी जी, प्रमिला जी इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका जी, मिला जी। है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है। उनके उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडिल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी। इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा है, पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ, और किसी किसमें हाथ क्यों डालूं?
0: विनम्रता की हद है,
1: हद है, हद है।
0: ओहो,
1: और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार। मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। तो उसमें एक तो लंबड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है
0: जी जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है
0: जी, क्या वाह वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
1: जी,
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो
0: जी,
1: हाँ, हंसते जख्म
0: जी जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
0: हंसते जख्म फिल्म का। जी बिल्कुल वही सुनते हैं।

0: आता है होता है ये भी के जमी से भी कभी आसमान मिल गया के जहां मिल गया।
1: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा
2: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब ही उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया।
1: क्या बात है,
2: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
1: क्या बात,
2: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए उनकी, 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है और 2 किडनी स्टोन की। उस वक्त रेजर वेजर कुछ लाया था, स्टेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो
1: जी, जी।
2: तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की, डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था।
1: अच्छा।
2: घर में सासू जी थी।
1: हाँ।
2: लेकिन मैंने बोला नहीं अम्मी, मैं टूर कैंसिल, क्योंकि ये सब अचानक आया।
1: हाँ, हाँ।
2: प्रीप्लान तो हमारा टूर था, तो बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका।
1: अच्छा।
2: और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा।
2: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे।
1: अच्छा।
2: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ।
1: ओ,
2: उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था।
1: हाँ,
2: तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो।
1: हाँ,
2: फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे।
1: हाँ,
2: तो ऐसे सब होके भी उन्होंने ऐसे एक इंसिडेंस है।
1: हाँ,
2: ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है।
1: हाँ, हाँ,
2: वो मेरे लगा दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।

0: नहीं, भाग्यशाली आप हैं।
1: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
0: जी जी, जी।
1: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कंपटीशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए, फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों की मिला मुझे कब साथ मिला
0: जी, जी।
1: उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए। बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए
0: जी।
1: तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का
0: जी।
1: वो चढ़ उतार रहता है ऐसा बोलते हैं कभी कभी चढ़ कर, तो मेरा शुरू से लेके चढ़ता ही जा रहा है।
0: वाह वाह,
1: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
0: क्या बात, परिवार की बात चली है
1: जी।
0: तो आपकी अगली पीढ़ी में
1: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी।
0: अच्छा,
1: शो में शुरू से मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्त हुआ, मैं कंट्रोल कर रही हूँ।
0: अच्छा,
1: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना, वो छोटी थी दोनों।
0: हाँ, हाँ,
1: तो उनका जाते हैं उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
0: अच्छा,
1: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गई।
0: बचपन से ही उन्होंने आपको गाते
1: उन्होंने
0: हुए देखा,
1: गाते देखा तो उन्होंने
0: तो वो
1: भी
0: गाती
1: थी और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे नहीं कि क्यों आए या ऐसे ऐसे नहीं। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे।
0: क्या बात,
1: बड़ी बेटी एकदम, ए हमारी माँ है वो, हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं।
0: क्या बात है, क्या बात, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
1: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट
0: जी, जी, जी। अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा, आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा?
1: हाँ, हम लोग डुएट भी गाते थे
0: जी,
1: वो
0: जी।
1: मन क्यों बहका रे बहका वो है, फिर कजरा मोहब्बत वाला वो है, फिर अन्ना जी का अपलम चपलम उस पे डाल भी
0: बताता
1: था मैंने शो में, ऐसे सब डुएट गाने हम लोग। तो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे। हाँ, फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरे ने लिया वो।
0: अच्छा,
1: पंख होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो में, बहुत लोगों को पसंद
0: आया। क्यों नहीं यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं।
1: अरे बापरे,
0: रामलाल जी का कंपोजिशन है।

0: ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।
1: डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, आई पिक्चर की कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज, टॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज, डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।
0: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया के रंग दिया है वहां से पहली,
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
1: मैं निकला ओ कटी लेके ओ रास्ते पर,
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छपकर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है हाँ।
0: आज के मेहमान
2: और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
5: सुनिए
6: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया।
6: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: आप सुन रहे हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5 बजे है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

युवा साथी सुन रही है युववाणी। मैं अर्चना आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे महाराणा प्रताप जयंती, गोपाल कृष्ण गोखले जयंती, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के बारे में। तो हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप जयंती से। जी हाँ दोस्तों, वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई 1500

0: 1540 को हुआ था। उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे और उनका नाम इतिहास में वीरता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक उनसे संघर्ष करते हुए अंततः अकबर महाराणा प्रताप को अधीन करने में असफल रहा। महाराणा प्रताप की नीतियां शिवाजी महाराज से लेकर ब्रिटिश के खिलाफ बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी है। उनका जन्म वर्तमान राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंताबाई के घर हुआ था और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था और राजपूत समाज की परंपरा और महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली व काल गणना के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म है वो पाली के राजमहलों में हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप है उनके जन्म को लेकर है वो कई इतिहास में धारणाएं हैं, लेकिन माना जाता है कि उनका जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप जो कि राणा उदय सिंह की दूसरी रानी धीरबाई, जिसे राज्य के इतिहास में रानी भटियानी के नाम से जाना जाता था, यह अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकार बनाना चाहती थी और प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर इनके विरोध स्वरूप जगमाल है वो अकबर के खेमे में चले जाते हैं और प्रताप का जो प्रथम राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 में गोगुंधा में हुआ था। लेकिन विधि विधान स्वरूप बात करते हैं तो इनका जो द्वितीय राज्याभिषेक है वो 1572 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ और दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर का राठौर शासक राव चंद्र सेन भी वहां पर उपस्थित थे। और इनके जीवन काल के बारे में या शासन काल में जो सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, इसीलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत है वो भी नियुक्त किए, जिसमें जो सबसे पहले उन्होंने जलाल खा है वो जो कि प्रताप के खेमे में गए, इसी क्रम में उन्होंने मान सिंह, फिर भगवान दास, फिर राजा टोडरमल, इनको है वो प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया। इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जो कि यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ और मुगलों के मध्य हुआ था और इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने ही किया था और भील सेना के सरदार पांडराव की ठाकुर राणा पुंजा सोलंकी थे और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खान सूरी थे और इस युद्ध में महाराणा प्रताप हैं उन्होंने अपने शौर्य है उसको दिखाते हुए, वीरता को दिखाते हुए है वो मुगलों के सामने समर्पण नहीं किया और उन्होंने है वो मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। और इस अगर हम हल्दीघाटी युद्ध की बात करते हैं तो यह जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप हैं उनकी शौर्य गाथा है वो उसमें हम एक स्वर्णिम है वो पन्नों में देख सकते हैं कि इसी युद्ध से है वो महाराणा प्रताप ने अपनी शौर्य वीरता और अपनी जो कह सकते हैं कि मुगलों के प्रति है उन्होंने जो अपने जो साहस है उसको दिखाते हुए मुगलों को छक्के छुड़ा दिए थे। श्रोताओं अब हम सुनेंगे महाराणा प्रताप की व्यक्तित्व के बारे में वार्ताकार कृतिका व्यास के साथ।
1: नमस्कार, आज हम बात करेंगे राजस्थान के उस पावन धरा और व्यक्ति की जिसकी हुंकार से अरावली की पर्वतमालाएं आज भी गूंजती है और वे व्यक्ति है मेवाड़ के शिरोमणि महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का नाम वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है और जब भी हम भारत के वीर सपूतों का नाम लेते हैं तो महाराणा प्रताप का नाम बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में भी पराधीनता को स्वीकार नहीं किया और अंतिम समय तक अपने स्वाभिमान तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। कवि श्याम नारायण पांडे की ये पंक्तियाँ महाराणा प्रताप की वीरता को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाती है कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर, ये रण बीच चौकड़ी भर भर

कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। श्रोताओं, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जयवंतीबाई थी। बचपन से ही प्रताप साहसी, स्वाभिमानी और निडर थे। उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी और शस्त्र संचालन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया था और ऐसा भी कहा जाता है कि बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में नेतृत्व और वीरता के गुण दिखाई देने लगे थे। वे साधारण जीवन जीना पसंद करते थे और अपने प्रजा के सुख और दुख को वे बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश के महाशासक थे। उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन फैल रहा था। अकबर चाहते थे कि सभी राजा उनकी अधीनता को स्वीकार करें और उनके भय से कई राजाओं ने ऐसा किया भी, लेकिन प्रताप नहीं। महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं किया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और रक्षा के लिए हर कठिनाई सह लेंगे, लेकिन किसी विदेशी शासक के सामने झुकेंगे नहीं। उनका यह आत्मसम्मान इन पंक्तियों में स्पष्ट दिखाई देता है कि माथा झुका के जीना जिसको स्वीकार नहीं था, मेवाड़ की मिट्टी का वीर कभी लाचार नहीं था। श्रोताओं, महाराणा प्रताप का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने जंगलों और पहाड़ों में रहकर कठिन परिस्थितियों का सामना किया। कई बार तो उनके परिवार को भोजन तक की कमी झेलनी पड़ी थी। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब उनके परिवार को घास की रोटियां खाकर जीवन बिताना पड़ा, लेकिन इन कठिनाइयों ने उनके साहस और आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। महाराणा प्रताप के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना हल्दी घाटी का युद्ध है। यह युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और अकबर सेना के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, उसमें अकबर की ओर से राजा मान सिंह सेना का नेतृत्व कर रहे थे। मुगल सेना संख्या में बहुत ही बड़ी थी, लेकिन महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया और अपनी अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वे लड़ते रहे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक भी इतिहास में अमर हो गया। चेतक केवल एक घोड़ा ही नहीं था, बल्कि स्वामी भक्ति का और साहस का एक प्रतीक था। युद्ध के दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और अंत में चेतक ने भी अपने प्राण त्याग दिए। आज भी चेतक की निष्ठा की कहानियां लोगों को भावुक कर देती हैं। चेतक की वीरता एवं स्वामी भक्ति इन पंक्तियों में स्पष्ट दिखाई देती है कि नीले घोड़े का सवार था, मातृभूमि का रखवाला था, अपने प्राण गवाकर जिसने राणा को बचा डाला था। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक नहीं रहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार संघर्ष जारी रखा और धीरे धीरे करके मेवाड़ के कई क्षेत्रों को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि एक सच्चा वीर वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता। महाराणा प्रताप केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक आदर्श शासक भी थे। वे अपने प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे और न्यायप्रिय राजा के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने सदैव अपने राज्य की स्वतंत्रता और सम्मान को सर्वोपरि रखा। इतिहास में यह भी कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर स्वयं राणा प्रताप के वीरता और स्वाभिमान का सम्मान करते थे। अकबर चाहता था कि राणा प्रताप उनकी अधीनता को स्वीकार कर ले, लेकिन प्रताप ने कभी अपने सिद्धांतों और स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप की यही दृढ़ता उन्हें अन्य राजाओं से अलग बनाती थी। कहा जाता है कि अकबर भी उनकी बहादुरी, नेतृत्व और अडिंग साहस से प्रभावित था। महाराणा प्रताप ने यह सिद्ध कर दिया था कि एक सच्चा वीर वही होता है
जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों पर अटल रहे।

0: एक महत्वपूर्ण योगदान था। प्रताप सभी जातियों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे, और यही कारण था कि भील समुदाय के लोग उन्हें अपना सच्चा शासक मानते थे। और लोगों का विश्वास था कि कठिन परिस्थितियों में भी प्रताप उनके साथ रहेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी विशेषता यह भी थी कि उन्होंने कभी भी हार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और उनकी यही बात उन्हें बाकी शासकों से अलग बनाती थी कि जहाँ एक तरफ अपने साम्राज्य को खो देने और अकबर की सेना द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाने के भय से अधिकतर शासकों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, वहीं राणा प्रताप एक ऐसे वीर सपूत के रूप में सामने आए जो अपने मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने से पहले एक क्षण भी नहीं सोचते थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सम्मान धन दौलत नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, साहस और स्वतंत्रता में होता है। महाराणा प्रताप का जीवन आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें बताता है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि मन में साहस और दृढ़ निश्चय हो तो हर बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। कवि की ये पंक्तियां उनकी वीरता को सच्ची श्रद्धांजलि देती है कि वीरों का कैसा वसन जब देश पुकारे रण के लिए, कि वीरों का कैसा वसन जब देश पुकारे रण के लिए, जीवन अर्पित कर देना ही सच्चा सम्मान है मातृभूमि के लिए। प्रिय श्रोताओं, आज भी जब महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है तब हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। आज के युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने देश, समाज और संस्कृति के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। हमें उनके साहस, त्याग और देशभक्ति के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इन्हीं प्रेरणादायक शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व पर वार्ता कृतिका व्यास व्यास के साथ, जिन्होंने हमें बताया कि महाराणा प्रताप, जिनका शौर्य, जिनकी वीरता, स्वाभिमान और मुगलों, विशेषकर सम्राट अकबर के खिलाफ अपने कई प्रतिरोध के लिए है वो जाने जाते हैं, और हल्दीघाटी का युद्ध जो कि उनके जीवन का सबसे प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। तो श्रोताओं, अब हम सुनेंगे एक प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे
1: फिल्म
0: अनमर से शिल्पा राव और क्षितिज तरे की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जयंती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जयंती जो कि प्रतिवर्ष 9 मई को यानी कि आज ही के दिन मनाई जाती है। महाराष्ट्र में 1866 में जन्मे महान भारतीय उदारवादी नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले, जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में विख्यात गोखले शिक्षा के प्रबल समर्थक और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। 9 मई 1866 को रत्नागिरी जिले के कोटलुक गांव में इनका जन्म हुआ। उन्होंने महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त की और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनका मार्गदर्शन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और स्वतंत्रता आंदोलन में एक उदारवादी आवाज भी थी जो मौजूदा संस्थानों के भीतर सुधारों की वकालत करते थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इस संगठन की स्थापना 12 जून 1905 को सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा और वंचितों के उत्थान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और इन्होंने स्वशासन प्राप्त करने के लिए अहिंसा और संवैधानिक तरीकों की वकालत की। भारत में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में इनकी अग्रणी भूमिका रही।

0: में आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, हम अपनी चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। हम चर्चा कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले जयंती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमने बात की महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गांधी जी की बात करते हैं तो उन्होंने अपना गुरु इनको माना और उनके सम्मान में गुजराती में धर्मात्मा गोखले नामक पुस्तक भी लिखी थी। गोखले जी ने ही गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पूरे भारत का भ्रमण करने की सलाह दी थी, और भारत का हीरा महान नेता बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें भारत का हीरा डायमंड ऑफ इंडिया कहकर सम्मानित किया था। और शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के बारे में बात करें तो गोखले जी ने भारत में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कट्टर है वो समर्थक थे। उन्होंने 1911 में इसके लिए ब्रिटिश विधान परिषद में एक ऐतिहासिक विधेयक भी पेश किया था, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है जिनकी स्थापना पुणे में 12 जून 1905 में की गई थी, और युवाओं को सार्वजनिक जीवन और देश सेवा के लिए प्रशिक्षित करने के लिए इस सोसाइटी की स्थापना उनके द्वारा की गई। 1905 के बनारस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों को तैयार करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी जो वित्तीय समझ है उसके कारण भारत का ग्लैडस्टोन भी इन्हें कहा जाता है, और ये उदारवादी नेता थे जो कि संवैधानिक तरीकों और अहिंसा में विश्वास रखते थे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म चलते चलते से आर्टिस्ट अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा करेंगे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो कि एक वैश्विक जागरूकता अभियान है जो हर साल दो बार यानी कि मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और यह हम आज के दिन यानी कि 9 मई को मना रहे हैं और हर साल है वो इसकी कुछ महत्वपूर्ण थीम रखी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं 2026 की थीम के बारे में तो हर पक्षी मायने रखता है, आपके अवलोकन महत्वपूर्ण है, यानी कि एवरी बर्ड काउंट्स योर ऑब्जर्वेशन मैटर। तो ये थीम है, उसके साथ हम ये जो प्रवासी पक्षी दिवस है वो मना रहे हैं और इस वर्ष का अभियान सामुदायिक विज्ञान की भूमिका पर केंद्रित है और आम लोगों को पक्षियों की गिनती करने और उनके डेटा को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि उनके संरक्षण में मदद मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ हम 2026 का यह जो प्रवासी पक्षी दिवस है वो मना रहे हैं। बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो इसकी शुरुआत है वो 2006 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। प्रवासी पक्षियों के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रकाश प्रदूषण, आवास की कमी, इसके बारे में दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है। भारत में हम अगर प्रवासी पक्षियों की बात करते हैं तो भारत में अमूर फाल्कन, नॉर्दर्न पिंटेल, रूसी पेलिकन और बार हेडेड गीज जैसे पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि अन्य साइबेरियन क्रेन की बात करते हैं तो ये सर्दियों में रूस से भारत विशेषकर राजस्थान के भरतपुर आते हैं और अमूर फाल्कन ये साइबेरिया से दक्षिण अफ्रीका जाते समय नागालैंड में पड़ाव डालते हैं। और ग्रेटर फ्लेमिंगो ये पक्षी मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। बार हेडेड गीज ये दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से है जो कि हिमालय को पार करके भारत आते हैं। और अगर हम प्रवासी पक्षियों के लिए जो कठिनाई या खतरे के बारे में बात करते हैं तो प्रकाश प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और आवास का नुकसान ये विशेषकर इनके लिए खतरा है। तो रात में जो तेज रोशनी है वो पक्षियों को उनके रास्ते से भटका देती है और जलवायु परिवर्तन में भोजन की कमी, मौसम में बदलाव उनके प्रवास चक्र को प्रभावित करते हैं। और वेट लैंड्स का सूखना या शहरीकरण इसके कारण भी इन पक्षियों को नुकसान पहुंच रहा है। तो हमने बात की कि जो ये प्रवासी पक्षी है, ये प्रवासी पक्षी है वो पारिस्थितिक महत्व है उसको हमको समझाते हैं। तो प्रवासी पक्षियों के पारिस्थितिक महत्व को समझते हुए उनके सामने आने वाले खतरों के खिलाफ एक वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही इस दिन को है वो मनाया जाता है। और इसके कई जो वैज्ञानिक कारण हैं उसको भी अगर हम बात करते हैं तो पक्षी अपनी यात्रा के लिए पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें सितारों की स्थिति और सूरज के कोण का उपयोग करते हैं और लंबी उड़ान के लिए पक्षी अपने शरीर में वसा जमा करते हैं जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में इनके काम आती है। और प्रकाश प्रदूषण इनको है वो खतरा पहुंचाता है। साथ ही साथ कीटनाशक जो 2024 की थीम की बात करते हैं तो कीटों की रक्षा इसी पर आधारित थी क्योंकि कीटनाशकों के कारण पक्षियों का जो मुख्य भोजन कीड़े है वो खत्म हो रहे थे और जब उनको भोजन नहीं मिलेगा तो वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। और आवास का नुकसान जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि, इनका सूखना उनके लिए सबसे बड़ा संकट है क्योंकि ये उनके पड़ाव स्थल है वो होते हैं। भारत सरकार भी इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे राष्ट्रीय कार्य योजना है, रामसर साइट्स है, विशिष्ट प्रोजेक्ट्स भी है जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्स, गिद्धों के संरक्षण के लिए विशेष प्रजनन कार्यक्रम है वो भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन जब तक स्थानीय समुदाय या हम सभी की वो साझेदारी नहीं रहेगी तब तक ये जो प्रवासी पक्षी है उनको खतरा बना रहेगा। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि हम
प्रवासी पक्षी है, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझे, जलवायु परिवर्तन को समझे, प्रकाश प्रदूषण जो कि इनको नुकसान पहुंचाता है, और आवास स्थल है वो इनके लिए हम उपलब्ध कराए, ताकि ये विभिन्न जो देश विदेश से आने वाले जो पक्षी है वो भारत के प्रति भी है वो आकर्षित हो।

कहीं रंगी आंचल आहा, कहीं होंठ गुलाबी ओहो, कहीं चाल शराबी आहा, कहीं आँख में जादू ओहो, कहीं जिस्म की खुशबू आहा, कहीं

वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है।

0: जो सबसे अलग है,
1: वो लड़की
0: जो सबसे अलग है,
1: वो लड़की
0: जो सबसे अलग है,
1: वो लड़की
0: जो सबसे अलग है।

वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बादशाह से आर्टिस्ट अभिजीत की आवाज में प्यारा संगीत। अब हम चर्चा करेंगे यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह आमतौर पर हर 2 साल में मनाया जाता है और यह जो सप्ताह है वो सप्ताह जो हम 2026 में यानी कि इस साल में 8 मई से 14 मई के है वो मैं मना रहे हैं। इसका उद्देश्य है सतत विकास और सुरक्षित गतिशीलता, इसका फोकस रहेगा इस साल का, ताकि 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने के साथ साथ इसको मूलतः समाप्त करने का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। भारत में हम अगर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम की बात करते हैं तो यह जो सड़क सुरक्षा है उसके लिए जो 11 जनवरी से 17 जनवरी तक है ये रहा था, और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह वो 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक, और इसका जो स्लोगन रहा था मुख्य नारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है वो रहता है। तो 2026 के लिए इसके जो मुख्य लक्ष्य है वो है तकनीक का उपयोग, यानी कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए AI और स्मार्ट ट्रैफिक कैमरों का अधिक उपयोग करना, युवाओं को जागरूक करना यानी कि स्कूल कॉलेज है उसमें जाकर छात्रों को सड़क जो नियम है उनके प्रति संवेदनशील बनाना, उनको समझाना कि कैसे उनको है वो हेलमेट है सीट बेल्ट है उसका उपयोग करना है, क्योंकि 2-व्हीलर सवार हैं उनके लिए हेलमेट और कार के सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट है वो अनिवार्य होता है, और ये सख्त है वो अभियान है और इस नियम को युवाओं को है वो अपनाना है, और भी युवाओं को जो अपनी ड्राइविंग के समय है वो किस तरीके से उनको कंट्रोल रखना है या किस तरीके से उनको राइट जो वे में है वो चलानी है, और जो नियम होते हैं उनको नियमों का जो पालन करना है वो कितना जरूरी है क्यों जरूरी है, ये जो जागरूकता है वो 2026 का मुख्य लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को सरकार द्वारा प्राप्त करने के लिए है वो कई विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं और स्कूलों में विशेषकर है वो कॉलेजों में है वो बच्चों को बताया जाता है। तो 2026 तक भारत और दुनिया भर में सड़क सुरक्षा के लिए AI जो कैमरे हैं उनका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। बिना हेलमेट और फोन पर अगर बात हो रही है तो AI सिस्टम खुद ही फोटो खींचकर चालान काट है वो देगा, और स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स है तो ट्रैफिक के दबाव के हिसाब से लाइट का समय अपने आप बदलता है ताकि भीड़ कम हो और दुर्घटनाएं ना हो। और 2026 के अभियान में स्कूलों के पास साइलेंस जोन और लो स्पीड जोन बनाने पर बहुत जोर है वो दिया जाएगा, और बच्चों को स्कूल बस और वैन में सुरक्षा के लिए नए चाइल्ड सेफ्टी लॉक ट्रैकिंग सिस्टम की जानकारी है वो दी जाएगी, और गुड सैमिट है वो सैमिटन जो लॉ है यानी कि सरकार 2026 में इस कानून का और अधिक प्रचार करेगी। इसके तहत अगर आप किसी घायल की मदद करते हैं और उसे अस्पताल पहुंचाते हैं तो पुलिस आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगी और न ही आपको कोर्ट के चक्कर काटने होंगे। मदद करने वालों को नगद इनाम और सर्टिफिकेट देने की योजना और बड़ा है इसको और बड़ा बनाया जाएगा, ताकि लोग है वो अगर सड़क पर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो मदद के लिए आगे आए, क्योंकि कई बार लोग है वो घायल की मदद इसलिए नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि अस्पताल में जाकर है वो पुलिस आएगी उनसे कोई सवाल पूछेगी उनको चक्कर काटने पड़ेंगे कोर्ट के। तो ये जो गुड सैमिटन लॉ है इसके तहत यह तय किया गया है कि अस्पताल अगर आप किसी घायल को पहुंचाते हैं तो आपसे किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा ना आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। और जो विभिन्न कई प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन किया जाता है, जैसे सड़क सुरक्षा के लिए नए नारे है वो बनाना, तो बच्चे है वो ऐसे प्रतियोगिताओं में आगे आते हैं, समझते हैं कि कई बच्चे वाहन धीमा चलाए अपना और अपनों का जीवन बचाए, जल्दबाजी ही छोड़ो रीत सड़क सुरक्षा असली जीत, सड़क सुरक्षा का रखे ध्यान सुरक्षित रहे अपना हिंदुस्तान। तो इस प्रकार से

जो सड़क सुरक्षा है उसको महत्व देते हुए ये यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है वो मनाया जा रहा है। और अभी हमने बात की कि इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो टेस्ट है उससे पहले कई शहरों में वीआर सिमुलेटर का उपयोग अनिवार्य हो सकता है ताकि लोग बिना जोखिम के खतरनाक स्थितियों में गाड़ी चलाना सीख सके। और भी जैसे माफ कीजिएगा जेमिफिकेशन यानी कि बच्चों के लिए सड़क नियमों के मोबाइल गेम लॉन्च किए जा सकते हैं जिससे कि वे खेलते खेलते ट्रैफिक सिग्नल और संकेतों को समझ सके। और वाहनों को सुरक्षा रेटिंग देना और एडीएस तकनीक यानी कि सस्ती कारों में भी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग और लैंड कीप असिस्ट जैसे फीचर्स आने लगेंगे जो कि इंसानी गलती से होने वाले हादसों को रोकेंगे। तो इस प्रकार से जो ये यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है वो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए है वो मनाया जाता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म भूल भुलैया से नीरज श्रीधर की आवाज में ये प्यारा सा गीत। समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो अपनी दोस्त अर्चना को दीजिए इजाजत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। संस्कृति भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर। न्यूज एट 9 का समय रहेगा रात्रि 9 बजे। रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या।

शाम 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से। शाम 6:40 पर आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा शाम 6:30।

बेहतरीन फिल्मी गानों का आनंद ले सकते हैं हमारे श्रोता रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र से। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8:30 पर। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे शाम 7:30 पर आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र से। किसान भाई अपना कार्यक्रम किसान वाणी सुन सकते हैं शाम 7 बजे। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा शाम 6:15 और अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:05 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।
1: एपिसोड 61।

राजा प्रताप भानु उस घोर वन में रात्रि विश्राम के लिए आश्रय देने वाले मुनि से बहुत प्रभावित हुआ, अतः सविस्तार उसका नाम धाम जानने की इच्छा प्रकट की। मुनि कपट में डुबोकर मधुर वचन बोला, तुम पवित्र विचार तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो, अतः तुमसे यदि कुछ छिपाऊं तो मुझे दोष लगेगा। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी कारण मेरा नाम एक तनु है। फिर उसने राजा को तपस्या की महिमा बताई। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और तप से ही प्राप्त शक्ति से रुद्र उसका संहार करते हैं।

लेऊ अधिक स्नेह जनाय। सुनु सती भाव कहऊ मही पाला इहाँ बसत।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस का। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: रोगी निर्धन निर्बल थारे आगे शीश झुकावे
1: आगे शीश झुकावे।
0: भूत पिशाच निकट नहीं आवे जो थाने नित

0: दुख हरो दारिद्र हरो ते कष्ट हरो बालाजी
1: मारो कष्ट हरो बालाजी
0: रोग शोक सब दूर करो ते सुखी करो बालाजी।

0: पवन पुत्र है राम दूत थारे सारी दुनिया आवे
1: थारे सारी दुनिया आवे
0: थारा दर्शन करे चाव से महिमा थारी गावे
1: महिमा थारी गावे
0: ओ नैया।

0: सरसी छन भगत री पीड़ मिटाया सरसी
1: बजरंगी
0: हर सारी दुनिया आवे
1: हरे सारी दुनिया आवे
0: हारा दर्शन करे चाव से महिमा।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: 4. मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई गईं, जिनमें बड़ी संख्या में मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उच्च न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने बताया कि लोक अदालतों में आपसी समझौतों के माध्यम से मामलों का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे अदालतों का समय भी बचता है और पक्षकारों को त्वरित न्याय भी मिलता है।
1: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें कि लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होती होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको कि आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है, उनको हम इस लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास MACT के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाई भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
0: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विशिष्ट सचिव रश्मि नवल ने आकाशवाणी को बताया कि इस लोक अदालत में 7.5 लाख से अधिक प्रकरण रेफर किए गए।
2: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में 30 का गठन किया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में 3 बेंचेस का गठन किया गया और

0: समस्त डीएलएसए राजस्थान में 476 476 बेंचेस का गठन किया गया, मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में। और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
1: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नई न्याय संहिता का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को दंड देना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में श्री मेघवाल ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोक अभियोजकों से नए कानून पर विस्तार से चर्चा की गई और नई प्रणाली को लागू करने में आ रही व्यवहारिक समस्याओं पर मंथन किया गया।
2: क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें ईपी और एपीपी की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
1: कार्यशाला में राज्य के विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। उन्होंने लोक अभियोजकों की समस्याओं को सुना और उनके प्रभावी समाधान पर चिंतन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांगजन मामलों और नई आपराधिक विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा है कि आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग हमेशा मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। वे आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय विषय पर 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मसीह ने कहा कि बदलते समय के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग भी जरूरी है, लेकिन उसका विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने तकनीक के उपयोग में न्याय के हितों का उल्लंघन नहीं करने की बात कही। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और सुबोध लॉ कॉलेज की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के शिक्षाविदों, न्यायविदों और शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान कार्यों को लेकर एक एमओयू भी किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीलंका के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस ने न्याय व्यवस्था में तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का ये ऐतिहासिक जनादेश विकास, सुशासन, राष्ट्रहित और जनविश्वास की सशक्त अभिव्यक्ति है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने आज जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और ICU जैसे संवेदनशील स्थानों पर लापरवाही बरतने पर संस्थान प्रभारी और यूनिट हेड सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। श्रीमती राठौर ने बताया कि अस्पतालों में संक्रमण को रोकने के लिए नियमित रूप से स्टरिलाइजेशन किया जाएगा। उन्होंने सीनियर डॉक्टरों को ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और दवाओं के भंडारण के मानकों का पालन करने को कहा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाल ही में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की मौत और तबियत बिगड़ने के प्रकरण में राज्य सरकार ने एक चिकित्सक सहित 2 नर्सिंग कर्मियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही UTB पर कार्यरत एक चिकित्सक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। 2 अन्य चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस

0: जारी किया गया है। उधर कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज कोटा पहुंचकर अस्पताल का दौरा किया। इस दल का नेतृत्व कर रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम की स्थिति खराब होने के बावजूद भी वहां सर्जरी की गई, जिसके कारण मरीजों में संक्रमण फैला। श्री मीणा ने जिम्मेदार उच्च अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें नमन करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का त्याग और स्वाभिमान युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। भरतपुर में इस अवसर पर शौर्य यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी इस यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बाद में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला। वहीं पाली जिले के जवाली में रैली निकाली गई और रक्तदान शिविर लगाया गया। और अब मौसम। प्रदेश के पश्चिमी जिले भीषण लू की चपेट में हैं, वहीं दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। आज जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी में दिन का पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। कुछ अन्य पश्चिमी जिले भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। दिन के साथ साथ पश्चिमी जिलों में रात का पारा भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीती रात फलोदी में न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जोधपुर में पारा 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान के और बढ़ने के आसार हैं।
1: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत कार्मिकों के प्रशिक्षण का दौर जारी है। इसी कड़ी में डूंगरपुर के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के तीसरे बैच का 3 दिन का प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ। तहसीलदार उज्जवल जैन ने बताया कि ये डिजिटल जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में 16 मई से 14 जून तक मकानों के सूचीकरण का काम किया जाएगा, जबकि मुख्य जनगणना अगले साल फरवरी में होगी। प्रशिक्षण में मोबाइल ऐप के उपयोग, लेआउट मैप बनाने और स्वगणना की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान प्रगणकों को फील्ड में मोबाइल के जरिए डेटा दर्ज करने का व्यवहारिक अभ्यास भी कराया गया। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। वे आज जयपुर में शहर की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे। श्री मित्तल ने विशेष रूप से महिला और बाल अपराधों सहित SC ST से जुड़े मामलों में जल्द अनुसंधान और प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास पैदा करना होना चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज भूगोल विषय की प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रदेश के 38 जिलों में आयोजित इस परीक्षा में कुल 76.43% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार परीक्षा के लिए कुल 3,95,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 3,02,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना।

0: भावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख नीलिमा दाधीच ने तैयार किया है। सृष्टि रचियता जगत पिता ब्रह्मा की पवित्र नगरी और अपनी जायकेदार कढ़ी कचौरी के नाश्ते के लिए प्रसिद्ध अजमेर जिले की चिट्ठी में हम आपको हालिया खबरों, ताजा घटनाक्रम और जिले की मुख्य गतिविधियों के बारे में बताएंगे। चिट्ठी की शुरुआत एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की बात के साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। ये भर्ती परीक्षा इस साल दोबारा से सितंबर महीने में संभावित है। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि अब केवल वही 3,83,000 अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा दे सकेंगे जो पहले दोनों पेपर में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इसमें अवसर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार और अपडेट करने का मौका दिया जा रहा है। संशोधन की ये प्रक्रिया 16 मई से 30 मई तक चलेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट और रिक्रूटमेंट पोर्टल देखते रहें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिले में इस परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 8,900 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड ने पारदर्शी और सुचारू तरीके से परीक्षा करवाने के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है। जिले में 16वीं राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया 2027 शुरू हो गई है। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिक स्वगणना कर सकते हैं। वहीं 16 मई से 14 जून तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर मकानों की गिनती करेंगे। जिले में जनगणना के लिए मास्टर ट्रेनर्स को CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने डिजिटल जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम किए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले महीने अजमेर प्रवास पर रहे। उन्होंने अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई वेबसाइट का लोकार्पण किया। ये वेबसाइट भारतीय ज्ञान परंपरा की आधुनिक दृष्टि विषय पर विकसित की गई है। लोकार्पण समारोह में राज्यपाल ने नई तैयार वेबसाइट की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से विश्वविद्यालय की सभी सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है, जिससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और अभिभावकों को सभी शैक्षणिक जानकारियां तथा पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश अग्रवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय अब जीरो कार्बन कैंपस हो गया है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों एक समारोह में 37 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की। ये कार्यक्रम अजमेर के वैशाली नगर बधिर विद्यालय में आयोजित किया गया। स्कूटी मिलने से इन दिव्यांगों को जीवन यापन, रोजगार और कामकाज में सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने 118 जरूरतमंद व्यक्तियों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। बीते महीने जिले को कई विकास कार्यों की भी सौगात मिली। चंद्रवरदाई नगर योजना में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले JNIT नर्सिंग स्कूल का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी के मुख्य आतिथ्य में शिलान्यास किया गया। साथ ही मानसून के दौरान शहर में जल भराव की समस्या से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर विधायक श्री देवनानी के प्रयासों से केसरबाग पुलिया को चौड़ा और ऊंचा करने के काम के लिए राज्य स्तर पर स्वीकृति मिली। वहीं 3 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस लाइन नाले का काम भी किया जाएगा। जिले की राजकीय विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 बालकों और 16 बालिकाओं को जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। अजमेर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर।

0: और अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची, मोटी तादाद में मामला राजीनामा निपटाई किया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो, नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्यां और न्याय राधीन काम ली जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पताल में इलाज रा प्रोटोकॉल री कड़ाई पालना करन रा हुकम दीना। और प्रदेश में घन खर्ट होना तेज गर्मी रो असर, आवता दिना पारो और चढ़वा रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। विधिक सेवा प्राधिकरण री ओर आज देश भर माय साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची। प्राधिकरण रा सदस्य सचिव संजीव पांडे आकाशवाणी समाचार ने बतायो कि लोक अदालत माय राजीनामा लायक मामला री सुनवाई करी जावे है। वह कहो कि इनो अदालतां रो टेम बचवा सागे, पक्षकारा ने तुरंत न्याय मिले है।
1: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें की लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होती होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको की आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इन लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास MACT के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाई भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
0: राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के विशिष्ट सचिव रश्मि नवली आकाशवाणी ने बतायो कि आ लोक अदालत में 7.5 लाख बत्ता मामला सुनवाई सारू रेफर करी जा।
2: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में 2-3 का गठन किया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में 3 बेंचेस का गठन किया गया और समस्त DLSAs राजस्थान में 476 बेंचेस का गठन किया गया, मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में। और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
0: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो है कि नई न्याय संहिता रो मकसद सजा देवण री बजाय न्याय दिलावण है। वे आज जयपुर में राखी जी लोक अभियोजकां री राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहा है। ये पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका मेघवाल कहो कि कार्यशाला में लोक अभियोजकां सागे नुआ कानूना रा बारा में विगतवार चर्चा करी जी और वाने लागूकरण में आ रही परेशानियां रा बारा में विचार करी जियो।
3: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें EP और APP की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
0: कार्यशाला में राज्य विधि मंत्री जोगाराम पटेल ही लोक अभियोजकां री समस्यावां सुनी अरमारा निपटारा रा बारा में विचार कीनो। कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांग जन जुड़िया मामला और नुआ आपराधिक कानूना ने असरदार तरीका लागू करण रे बारा में खास तकनीकी सत्र रखी चिया। सुप्रीम कोर्ट रा जज न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी ने मानवीय मूल्यां और न्याय राधीन काम लेवण मथ जोर दिनो है। वह आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय मुद्दा मथ राखी चिया 2 दिन रा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। न्यायमूर्ति मसीह कहो कि बदलता जमाना सागे नवी तकनीक काम लेवण जरूरी है, पर तकनीक काम लेवण रे दौरान मानव मूल्यां नजरअंदाज नहीं करिया जा सके है और न्याय राहितां री अनदेखी नहीं भेवनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और एक गैर सरकारी कॉलेज का नींव रखा गया इन सम्मेलन में देश भर रा शिक्षाविद, न्यायविद और शोध करण वाला भाग लिनो। सम्मेलन में श्रीलंका रा पहली वाला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस न्याय व्यवस्था में तकनीक रा काम ने घणो खास बतायो।

भारतीय जनता पार्टी रा नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल रा मुख्यमंत्री बन गया है। कोलकाता रा ब्रिगेड परेड मैदान माए राखी जिया कार्यक्रम माए राज्यपाल RN रवि शुभेंदु अधिकारी ने पद और गोपनीयता री शपथ दिलाई। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही शिरकत कीनी। वह सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कहो कि पश्चिम बंगाल री जनता रो वो ऐतिहासिक जनादेश विकास सुशासन देश रा भला और जनता रा विश्वास री मजबूत अभिव्यक्ति है। ध्यान जोग है कि पश्चिम बंगाल में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी रो राज आयो है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा सगला सरकारी अस्पताल में अब इलाज जुड़िया सगला नियमा री कड़ाई पालना तय करी जावेला। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज जयपुर में आला अहलकार सागे मीटिंग कर बारा माए हुकम दीना। वह कहो के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और ICU सरी खिठौना लापरवाही री सूरत माए संस्थान रा प्रभारी और यूनिट हेड ने सीधा जिम्मेदार ठहराया जावेला। श्रीमती राठौड़ अस्पताल माए संक्रमण रोकण सारू कीटाणु खत्म करण बाबत नियमित तौर काम करण माथे जोर दीनो। कोटारा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल माए ऑपरेशन रे जरिए जापो भेवण पाछे नुवी मायड़ा री मौत होवण और तबियत बिगड़वारा मामला माए राज्य सरकार एक डॉक्टर समेत दो नर्सिंग कर्मचारियों ने मुअत्तल कर दीना है। ऐसा गई UTB माथे लागोड़ा एक डॉक्टर ने नौकरी निकाल दियो जियो है और दो डॉक्टरों ने कारण बताओ नोटिस देर जवाब तलब करी जियो है। दूजी कानी चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल काल कोटा चार वाकया रो विगतवार जायजो लीनो और जरूरी हुक्म दीना। चिकित्सा शिक्षा विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि मामला री शुरुआती जांच माए चिकित्सा प्रोटोकॉल और प्रक्रिया माए गंभीर लापरवाही री ठापण्या पाछे स्त्री और प्रसूति रोग विभाग रा यूनिट हेड डॉक्टर BL पाटीदार और यूनिट हेड डॉक्टर नेहा सिहरा ने कारण बताओ नोटिस दियो चियो है। ई वाकया पाछे कांग्रेस पार्टी वारा नुमाइंदा रो एक दल कोटा भेजियो। राज्य रा पहली वाला चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणारी अगुवाई माए ओ दल अस्पताल रो दौरो कीनो। ई पाछे वे अस्पताल प्रबंधन माथे घोर लापरवाही रो आरोप लगाता थका कहो के ऑपरेशन थिएटर और जापा विवरण रा कमरा री खराब हालत रे बावजूद वछे ऑपरेशन करी जिया जिन कारण मरीजा माए संक्रमण फैल गयो। महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज वाना सिरधा भाव सागर याद करिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए नमन करता थका कहो के महाराणा प्रताप रो त्याग और खुद माथे अभिमान युगा युगा ताई सीख देवेला। ई मौके भरतपुर माए शौर्य यात्रा निकाली ची। ई पाछे राखी जी संगोष्ठी माए महाराणा प्रताप री जबरदस्त हिम्मत और देशभक्ति री गाथावा याद करी ची। पाली जिला रा जवाली माई रैली निकाली ची और खून दान शिविर लगाई चियो। प्रदेश माए जनगणना 2027 री तैयारियां रा तेत कर्मचारियां ने सिखावण देवण रो दौर चाल रियो है। डूंगरपुर माए प्रगणका और सुपरवाइजरा रा तीजा बैच रो 3 दिन रो सिखावण कार्यक्रम आज पूरो भियो। सिखावण रे दौरान जनगणना सारू मोबाइल ऐप काम लेवण लेआउट नक्शो बनावण और स्व गणना रा काम रे बारा माए विगतवार जानकारी दी री जी। प्रगणका ने घर घर जार मोबाइल फोन रे जरिए डेटा दर्ज करण रो अभ्यास ही कराई चियो। ई दफा डिजिटल जनगणना 2 दौर माए करी जा रही है। राज्य माए इरा पहला दौर माए 16 मई 14 जून ताई मकाना री लिस्ट बनाई जावेला जबकि मुख्य जनगणना फरवरी 2027 माए करी जावेला। रबे मौसम प्रदेश रा अतुणी हल्का माए लू बाज रही है जबकि लंकाऊ उगनी हल्का माए आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। जैसलमेर बाड़मेर और फलौदी माए ऊंचो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। कुछ और जिला माए जबरदस्त तावड़ो पड़ रियो है बठे दिन सागे रात्रि भगत ही पारो सामान्य ऊंचो दर्ज करियो चा रियो है। बीती रात फलौदी माए 31.4 और जोधपुर माए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी चियो। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आवता दिना पारो और चढ़वारा आसार है।

0: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी।
1: जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल पुलिस रा अहलकारा ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करण और पीड़ित जनता ने तुरंत न्याय दिलावण रा जतन करण रा हुकम दिना है। वे आज जयपुर में शहर री कानून व्यवस्था बनाई रखण और अपराधा माथे काबू करण रे बारा माए राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। पुलिस कमिश्नर खास तौर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाला अपराधा और अनुसूचित जाति जनजातियों जुड़िया मामला माए तुरंत जाँच कर असरदार कार्रवाई करण माथे जोर दिनो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री ओर आज भूगोल विषय री प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांति सागे पूरी फेगी। राज्य 38 जिला माए फी परीक्षा माए 76.43 फीसदी उम्मीदवार शामिल फिया। आईपीएल क्रिकेट होड़ रहा तेत आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स पीछे मैच फैला। वो मुकाबलो जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम माए अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे शुरू फैला। आखिर में खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची मोटी तादाद में मामला राजीनामा निपटाई चिया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्यां और न्याय रा अधीन काम ले जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पताल में इलाज रा प्रोटोकॉल री कड़ाई पालना करण रा हुकम दीना। और प्रदेश में घनखर ठोणा तेज गर्मी रो असर। इसी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: श्रोताओं आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।
3: हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार।

0: समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: किसान वाणी सुन रहा सगला किसान बहन और पूजा बहन
6: और लालजी भाई रहा घना घना राम राम
5: राम राम। लालजी भाई, आज भाई गर्मी रो तो प्रकोप बढ़ रही है, तीनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और जेठ रो महीनो है तो असर भी पूरा दिख रहा है। खैर गर्मी का दिन है और गर्मी पड़ से और पड़नी भी चाहिए, क्योंकि जो मौसम है और जो रुत हुआ करे वो अगर वो अनुसार रहे तो जो है तालमेल बड़ो रहा करे। आपरो कम है कि आपरो जाप तो रख जाए हर चीज रहे हिसाब से। तो आप और किसान भाई है जो मेहनतशील है और खेतों में काम करता रही, तो सबसे पहले तो आपको वोनिज कहना है कि आने का जो समय है एक तो निरंतर रो समय है, खेतों में अड़ो विशेष काम की है कोने नहीं, तो जो भी निगरानी रो काम है, निराई गुडाई रो काम है या कृषि यंत्रों की देखभाल रो काम है, इसके अलावा भी और भी कोई छोटा मोटा काम होया करे, तो ये सब काम और वास्ते आप और किसान भाई सुबह रे वक्त में या शाम रे वक्त में जाके काम करे, तो तड़को तब पे ओवर टाइम खुद ना घर में रखे। और इसके बाद भी अगर आपको जाना पड़े तो कपड़ा वो हिसाब से पहले और मथे में टोपी लगाए के या कपड़ों बांध के जावे। और आप और गाँव में खाटो गणी होगी, इमली पानी है, कैरी पानी है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी रो सेवन करें ताकि आप और शरीर गर्मी न सहन कर रही और क्षमता आ सके। दूसरी बात है आप और पशुधन रही तो और भी ध्यान रखना आप और स्कॉप है और पशुधन अबूला जीव है और भी पूरा चाकरी रखनी पड़ से। बस यही है कि उम्र भी साफ सफाई वहाँ पर ध्यान रख जाए और थोड़ा जो उम्र बंधन स्थान है वो थोड़ा हवादार हुए ताकि आप और पशु भी गर्मी से राहत ले सके। बाकी आप बात कर जी आप और किसान भाई सो कि आप जो पशुओं की बात करी हो तो पशुओं वास्ते चारे की व्यवस्था करनी किसान भाई वास्ते एक बड़ो महत्वपूर्ण काम है। और इस वास्ते अगर वो बात कर जाए तो हमें तो कई प्रकार का चारा भी आ गया है, लेकिन सेवन घास जो है वो आप और ये क्षेत्र की कह सकते एक वरदान वाली घास है, क्योंकि एक लंबे समय तक रहा करे और ताजी रहा करे। सबसे बड़ी तो बात यह हुई कि आप और ये तो जो वातावरण है, जो तापमान है गर्मी रो वो मैंने सैन कंट्री पूरी उरी में क्षमता होया करे। और साथ में जो मरुस्थल जो पशु है उम्र वास्ते बहुत ही पौष्टिक और उत्तम चारो मोनियो जावे, क्योंकि हरो चारो है हरे चारे तो होड़ी कोड़ी नहीं। दूसरी जब सेवन घास लगाई जावे तो वो मिट्टी न पकड़ के रखी ताकि आप और रेगिस्तान न बढ़न सू न रोकिया करे, यानी कि मरुस्थलीकरण चिकन गया करे, मिट्टी जो बंजर हो रही है उन्हें रोकिया करे। दूसरो अगर अत्यधिक सूखो हो जो आप तो मौसम सूखो रहा करे और विषम तापमान है जो कि 45 से 50 डिग्री तक तापमान रहा करे, ये तापमान रमोए भी सेवन घास हरी भरी और ताजी रहा करे, यानी आप और पशुओं वास्ते तो बहुत उपयोगी है और आप और वास्ते भी एक बार मेहनत रो काम कम हो गया है। यानी एक तरीके से आप यह कह सकते कि जो आप रेगिस्तानी संस्कृति है वो एक अभिन्न हिस्सों बन गए है सेवन घास। आज के टाइम में की हो गया है कि जो प्राकृतिक आवास है वो मतलब अतिक्रमण हो गए है, अधिक चराई है या लोगों की घास उगाण प्रति जो अरुचि है, ये कारण ये प्राप्ति बहुत दुर्लभ हो रही है, बहुत ही कम लोगों ने प्राप्त हो रही है। तो लोगों ने मोए ये नो उगाउन री और आगे भी बनाए के रखन री सुरक्षित रखन री इच्छा होनी चाहिए। साथ में गोचर भूमि है या ओरण भूमि है और भी पूरा संरक्षण करें ताकि आप जो को है हरित संपत्ति है यानी कि हरित संपत्ति है यानी कि सेवन घास वो आप और आने वाली पीढ़ियों वास्ते बचड़ी रहे, क्योंकि आप और वास्ते तो एक वरदान है।
6: बिल्कुल सही बात है कि भाई गर्मी का मौसम पड़ रहा है तो अपन आप और भी ध्यान रखना है, आप पशु भी ध्यान रखना है और पशुओं ने ये गर्मी के मौसम में अपन जो बात करी सेवन घास तो देखो सेवन घास अपने वरदान भी है। तो अपन अपर स्वास्थ्य हिसाब से भी ध्यान रखना है। और एक अपने ये चीज़ देखो ये कि भाई गर्मी के मौसम में अगर अपन छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या समस्या हो जाए तो आप खुद अपर डॉक्टर बन जाओ। आप डॉक्टर अगर नहीं जाए कि आप बाजार में कोई मेडिकल दुकान गया और टिकड़ी ली और आप ले लियो ठीक हो गयो चल गए को, मतलब एक गलत चीज परंपरा चल रही है। अपन जो को भी कोर में प्राथमिक चिकित्सालय है
5: समय बचाने वास्ते आपको एक काम करना चाहिए। सही बात है,
6: ये देखो समय बचाने वास्ते भी है, पैसों बचाने वास्ते भी है, ठीक है। हम देखो आप अगर सरकारी अस्पताल में जाओ तो उसमें हर चीज फ्री है, अपन डॉक्टर भी फ्री में अपन चेक कर ले, अपन जो को भी अगर समस्या है तो अपन जांचो भी अपन फ्री में मिल जाओ और दवाई भी फ्री मिल जाओ। तो जब अपन हर चीज फ्री मिल रही है, अपन एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो अपन समस्या के बारे में अपन बता रहे हुए। तो देखो कि आप बात करो बुखारी मान लो, तो बुखार भी कई प्रकार बुखार हुए, हमें अपन उस टाइम कई कोई बुखार चले गुड़ी और आप कई गोली ले रहे हो तो अपन डॉक्टर ने बताओ और डॉक्टर ने बताने के बाद जो भी अपन दवाई लिख दे जो को रुको लिख दे वो बरोबर दवाई लो और जो भी 3 दिन रही 5 दिन रही या कोई भी अपन जांच दे पूरा कोर्स ले, कोर्स लेने के बाद पचो डॉक्टर ने अगर बिल्कुल स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाए तो बोले डॉक्टर का जरूरत को नहीं, अगर फिर भी थोड़ी सी लगे समस्या शरीर में उतरे थोड़ी पीड़ा लगे तो पचो डॉक्टर साहब कहने जाए।

0: बताइए कि
1: अगले
0: देखो
1: समय
0: कि
1: अड़ जाएगी कि अगर थोड़ी बहुत भी समस्या है तो फिर डॉक्टर से सलाह
0: डॉक्टर
1: लेंगे।
0: जान जाएगा कि छोटी सी बीमारी आगे जाए के कोई बड़ी गंभीर बीमारी नहीं रह जाए, तो अपन छोटी छोटी बीमारियां अगर रेडी हुआ करे तो अपन डॉक्टर जान चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। और पशुधन की बात करो, देखो पशुधन गर्मी चली पड़ी तो अपन, और भदक महीने भी चल रहे हुए तो अपन कोशिश यही करनी चाहिए कि पशुओं की सेवा करना करना चाहिए, जीव दया करनी चाहिए। तो वास्ते अपन समय अनुसार अगर कोई हमारा पशु भी है अपन घूम रहे हैं तो उन्होंने पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, अपन चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो पक्षी है तो वास्ते अपन ये भी कह सकें कि भाई आप छत में पानी रहा छोटा छोटा अगर चाडा भरक दो या पानी रहा कुछ भी आप पात्र भरक दो तो भी पशुओं तो भी अपन पक्षियों ने पानी की व्यवस्था हो जाए। गर्मी मौसम है तो आप कह सको कि भाई सब जना आप हिसाब से जो हो सके तो पशु पक्षियों की सेवा भावना रखे तो जरूर विश्व फलदायी लाभ ही मिलसे और पशुओं ने भी पक्षियों ने भी बुरा लाभ मिलसे। आप आगे भी बात जारी रखो और हमें आप सुन दो एक राजस्थानी लोकगीत।

बढ़िया राजस्थानी लोकगीत। अब बात कर रहे थे पर किसान भाईसो के भाई हाँ हिरण तीरो समय है और किसान भाई आप जो को फसल रो जो को काम होया करे चाकरी कौन करने तो ये समय रे मोए जो को ये समय रोपियो को आप कृषि यंत्र रे रख रखाव रे मोए कर सके क्योंकि उम्र लंबी उम्र रे वास्ते और ज्यादा समय तक उसको काम लेना से यानी पूरी कार्य क्षमता बढ़ाने वास्ते बहुत जरूरी है कि आप और बहुत अच्छे तरीके से रख रखाव कर सके। तो सबसे पहले तो यह है कि अगर ज्यादा पवन उपयोग में ले जाए तो उगर बाद वह मशीन के मौज को भी मिट्टी लग गई है या फसल का अवशेष है या नमी है उन्हें पूर्ण रूप से साफ कर दीजिए और उन्हें पूरी जो नमी है उन्हें सुखा दीजिए ताकि और उपकरण उन्हें पौने से भी धोड़ ले जाए ताकि उग्र मोए जंग भी नहीं लगे और पौने से धोने के बाद में उन्हें अच्छी तरह से सुखा देवे या पूछ लेवे कपड़े से ताकि आप मशीन है वो एकदम सही देवे। इसके साथ में जो मशीन में घूमने वाला पुर्जा है उग्र मोए भी समय समय मत है जो को है ऑयल डालता रहे या ग्रीस लगावे ताकि जब उसमें घर्षण कम हो और पुर्जा है जिसको घिसे नहीं जब मतलब अच्छी तरीके से काम करता रहे लंबे समय तक चले। इस साथ में जो नट बोल्ट है उम्र भी कसता रहे उम्र ध्यान रखता रहे कि ढीला पड़ गया है तो उन्हें सही करे खराब हो गया है पुराना है तो उन्हें बदल देवे और अपना जो घना से उपकरण होया करे वो लोहे रहा होया करे तो थोड़ा उम्र ध्यान रखे कि बरसात रहे मौसम रहे मोए अगर वो बाहर रह गया है तो उन्हें धूप में सुखा देवे और जो तो हो सके तो आप अगर पेंट कर लीजिए उम्र या प्राइमर कर लगा दीजिए तो आप उन्हें जंग से बचाए सब्जी और उम्र उम्र भी लंबी हो जा सके। और इन बात में है जो उपकरण है उन्हें सीधो धूप सो और बारिश से तो बचा के रखना चाहिए और साथ में अगर आप उन्हें ठंडी जगह मत है शेड मत है या एक जगह पर कमरों बड़ोड़ा होया करें उम्र में रख जाए तो बहुत ही उचित है क्योंकि उम्र सार संभाल करनी बहुत जरूरी है। ट्रैक्टर भी आप कॉम ले जाइए और तो उन्हें भी टायर और हवा है दबाव है वो सही रख जाए ताकि लंबे समय तक आप और उपयोग ले सक जाए। बैटरी है वो ध्यान रखता रह जाए ताकि उन्हें सुरक्षित जगह मत रख जाए लंबे समय तक उन्हें भी कॉमन लेना है और समय समय मत आप मशीनरी सर्विसिंग भी कराता रह जाए ताकि आप और जो खराब ऊर्जा है वो चेंज हो जाए बदल दे जाए और जे तो जो सही है उन्हें थोड़ी सार संभाल भी हो जाए। ऐसा रखन सो की है कि एक तो आप मशीन खराब को नहीं हुए लंबे समय तक चले मरम्मत भी आपको ना थोड़ी कम करनी पड़े और ईंधन भी बचत हो जाया करे और दूसरों है कि जब खेत में अपन जो काम करना है वो टाइम अपन मशीन एकदम तैयार मिल से वो टाइम आप अगर मशीन तैयार करने लग सो तो आप काम करने में लेट हो जा से और हो सके अड़चना होती रहे इस वास्ते आप पहले से तैयार रह जाए अगर आप पहले से तैयार रह सो तो आप काम सही समय में होते रह से यानी कि समय की बचत होती रह से। तो आप पर किसान भाई ऐसा कहना है कि हाने का समय जो पूरा सदुपयोग लेवे और आप उपकरण और पूरा बचाव करें बात आगे भी यही रख सो पहले सुन जी आप राजस्थानी लोकगीत।

0: तलाल जी भाई आपको सुनियो हमारा बढ़िया जड़े राजस्थानी लोकगीत और ये गीत से समापन रहे साथ ही आप और एक कार्यक्रम रो समापन रो समय भी हो गया है तो हमें किसान बैंस जैसे सीख कर जे राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे। और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे।

कसम लगती है हम समंदर के अंदर चले। ओ हो हो हम चले ओए रामचंद्र, हम चले ओए रामचंद्र।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुगम संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।
1: शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में TWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसी के और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवी के संग

0: घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप

0: से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से यह निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्पो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांध्र कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

बागों में हम जो मिले तो गाए सारी कोयले, महके सारा ये समा हवाएं महकी सी चले, तेरी खुशबू से भर जाए

सोनू निगम के गाए फिल्म अपने के इस गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है FM बैंड 101.8 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम संस्कृति भारती।

इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धुंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से, मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्ट प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें खुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे, मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को

वखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूँ कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगु थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई फिल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पर बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को क्या होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी हम गा रहे, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे, जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहां, जब आप वहां

0: पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था, तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था, कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ
1: है। ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100 100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैक्लुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैक्लुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी ICCR।
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है, जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुले।
2: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
4: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है, और मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाइज, जो हमारे 2-3 वर्टिकल है, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का न केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। आईसीसीआर आज की तारीख में 38 जो हमारे आईसीसी जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र वो विश्व में है और हमारे 11 ऑफिस जो है वो भारत के अंदर है प्लस जो हमारे भारतीय मिशन है और दूतावास और प्रधान कौंसुल वो है 200 के आसपास।

0: उनके द्वारा हम अपने सभ्यता संस्कृति अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट विदेशी आर्टिस्ट हैं जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7,000 से 8,000 स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छांव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
2: नमस्ते प्यार दोस्तों, मेरा नाम एकर जुगवाया है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे 1 साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का 1 साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है। भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में, और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं। भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए, और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त है, अलग अलग देशों के दोस्त है, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
4: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
1: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है, चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान। दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
4: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
1: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
4: और मैं प्रांजल।
1: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में
3: उन्हीं

0: की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
1: मेरा नाम सुनीता जाकर है। एक्चुअली प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपस होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B में एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर है। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहाँ का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहाँ से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊँ। मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती है।
2: मेरा नाम साक्षी है और मैं भारत और हरियाणा से आई। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ, जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे, तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9-10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी, बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला था कि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भालुगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन्स को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे, तो मैंने उनका काम देखा। फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली, तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
3: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ की साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते कारीगर घर में जो काम करते हैं पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
0: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
4: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को, हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
5: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
4: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
5: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस नौ को थामे रखा है

0: तो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
1: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
2: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो हैं वो एक साथ मिलके रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्री उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया है उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
0: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
1: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
0: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
1: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
3: भारत में और भारतीय वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रांग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
0: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहां था, मैं यहां हूं और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल
1: और मैं नेत्रा। बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी वी काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व पूरा आकाश समाया हुआ है।

0: सत्यजीत रे जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया और विदुषी गिरिजा देवी जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। राजकुमार मजुमदार इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल संतूर प्लेयर्स इन इंडिया, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santur with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santur under the guidance of the legendary santur maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
1: आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उजित उदय कुमार। राजकुमार मजुमदार अपने कार्यक्रम का आरंभ राग जनसम्मोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना तीन ताल में निबद्ध है।
2: He is accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar begins his santur recital with rag Jan Sammohini, presenting आलाप जोड़ and झाला. विलंबित composition is set to रूपक ताल and मध्य लय. द्रुत composition is set to तीन ताल।

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalay and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor Recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अदलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka.

ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी दिन के 11:55 पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।